भाई इतने दुख दर्द भरे गाने तो कभी ना चलाऊं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार ऑटो प्ले में बज भी जाते हैं। कई बार हमारी वो फीलिंग भी आती है, स्पेशली जब प्यार मोहब्बत की बातें करें उसमें दर्द नहीं आए तो क्या मतलब क्या होगा। पी फॉर प्यार, पी फॉर पेन भी होता है ना, ओके। पी फॉर प्याला भी होता है, कई बार प्याले की भी जरूरत होती है उसी पेन और प्यार के चक्कर में। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। इट इज 7:09 ऑन द क्लॉक, आज है 9 सितंबर। इट इज 9:09, व्हाट एन अमेजिंग डे। इट इज 9:09 बट इट इज नॉट 2009 और 29, इट्स ओके, डजंट मैटर, इट्स स्टिल 2026। ओके गाइस, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। दिस इज योर बेस्ट एपी द हिपी, ओनली ऑन फनेशियल रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डेलस। यस वी आर बैक, एंड आई होप यू हैड ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीक सो फार। और विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड।

And guys, we are back. It is 7:18 on the clock. This is Ippy the Hippie and you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. And you're also listening to my really squeaky chair that I'm trying to move. Unfortunately, वो अटक गई है. अगर आपको उसकी आवाज़ आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो, इग्नोर करो, इग्नोर व्हाट आई सेड. भाई, चेयर से याद आया, जब आप गाड़ी में बैठते हो अपनी सीट बेल्ट वगैरह लगाते हो कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होती है, स्पेशली डैलस में. डैलस का तो मतलब आई थिंक यूएस के स्टैट्स में दिखाया जाता है कि डैलस में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होती है, आपको पता है. एंड पीपल से दैट बिकॉज डैलस हैज सो मेनी ट्रक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ रेकलेस ड्राइवर्स ओवर हियर. तो इसीलिए अगर आप कभी एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या फिर यू नो यू हैड सम काइंड ऑफ अ ट्रिपल फॉल इंसिडेंट और सम काइंड ऑफ अ पर्सनल इंजरी इंसिडेंट वेयर इट इज नॉट योर फॉल्ट, मतलब चलते चलते आपके पड़ोसी का पेड़ आपके सर पे गिर गया और आपको चोट आ गई, दैट टेक्निकली वुड ऑल्सो क्वालिफाई. पड़ोसी का पेड़ गिरा यार, पड़ोसी की प्रॉब्लम है, उसने क्यों नहीं ध्यान रखा. देन यू नो वॉट यू कैन डू, यू नीड टू कॉन्टैक्ट ओमर खुआजा. ही इज अ पर्सनल इंजरी अटर्नी एंड यू कैन फोकस ऑन हीलिंग. ओमर खुआजा विल फाइट योर केस फॉर यू एंड यू डोंट पे एनीथिंग अनलेस यू एक्चुअली विन. कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ. जैसे मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई एम ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन और आज आई स्टार्टेड माई डे ऑफ विथ एक्चुअली मीटिंग माई बैंड, क्योंकि सुबह का टाइम मेरा फ्री रहता है. सो आई मेट माई बैंड, वी डिड अ वेरी नाइस रिहर्सल एंड वी डिड सम रिकॉर्डिंग्स जस्ट फॉर आवर सेक एंड एवरीथिंग. एंड वी वर लुकिंग एट कि हम लोग You know, we are doing like a Diwali special concert on 30th of October at Steve's Wine Bar in Denton. तो अगर आप free हैं तो ज़रूर आइए उसके लिए. और अगर free नहीं है कोई बात नहीं, आप video वगैरह भी देख सकते हैं. लेकिन guys, I'm going to play you one song from my band. And if you ever have a need for a Bollywood band or a Bollywood act or an entertainment,

एट योर इवेंट, एट योर हाउस, एट योर कॉर्पोरेट इवेंट इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, और अगर आपके इंप्लॉयज इंडियंस हैं एंड दे लव और दे जस्ट लव बॉलीवुड म्यूजिक, एंड इफ यू हैव अ संगीत और सम काइंड ऑफ अ ढोलकी इवेंट एंड यू वॉन्ट सम लाइव म्यूजिक, गुड लाइव म्यूजिक, एंड आई डोंट मीन लाइक फाइव सिंगर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैरियोके सिंगिंग विद अ कैरियोके विद बेसुरा करके गा रहे हैं, वो वाला नहीं. आई मीन लाइक एक्चुअली प्रॉपर सिंगिंग विथ इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग लाइव. देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस. माई बैंड इज कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. इफ यू लुक अस अप ऑन गूगल एनी वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड इट. इट्स कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. ओके, आई एम गोना प्ले यू लिटिल सॉन्ग, अ लिटिल कवर दैट वी डिड. दिस इज ओ हसीना बाय माई बैंड.

0: एंड गाइस आपको पता है ना सोनू निगम इज कमिंग टू डैलस एट द एंड ऑफ दिस मंथ. यस दैट इज राइट. डोंट फॉरगेट एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक इज गोना हैपन ऑन 26 सितंबर एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग्स दैट आइकॉनिक वॉइस ऑल ऑफ दिस इज लाइव. And so make sure you buy your tickets. The tickets are already on sale. Kyunki zyada din nahi hai, 10-20 din hi hai bache hue. The tickets are on sale at ticketmaster.com and or you can call 855-360-SHOWS for more information. And maybe you can buy a ticket on the phone too. Okay? So Revolution Sonu Nigam live. Aur sabse bada acha baat pata kya hai? Funasia is the exclusive media partner, तो आप इसके बारे में बहुत advertisement सुनेंगे क्योंकि हमारा काम है वो. तो अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं आपको मेरा फेवरेट सोनू निगम का गाना बजाऊंगी. एक्चुअली मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं, बट दिस इज लाइक रियली नाइस. सो स्टे ट्यून्ड.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
4: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
5: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं ही तो.
12: ओचो
13: होको,
12: ओचो
13: होको,
12: ओचो
13: इट्स होको.
10: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
14: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
11: उमर ख्वाजा।
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

वाह क्या गाना है. ए आर रहमान इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड म्यूजिक बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम्स एंड आई थिंक देर इज अ रीजन फॉर इट. हिज म्यूजिक इज क्विंटेसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स राइट. एंड वो जो करते हैं ना मतलब उनकी कॉम्पोजिशंस वो और कोई नहीं कर पाता, मुझे तो यही लगता है. आपको क्या लगता है? अपार्ट फ्रॉम ए आर रहमान आई थिंक माई सेकेंड फेवरेट कंपोजर इज अमित त्रिवेदी एंड देन आई थिंक माई थर्ड फेवरेट हैज़ टू बी ओ पी नैयर. यू नो आई नो थोड़ा एरा अजीब हो गया, मॉडर्न मॉडर्न एंड देन सडनली ओ पी नैयर, वो तो बहुत पुराना है. बट यू नो दीज गाइज दे ऑफर्ड समथिंग न्यू. बाकी आई नो वी ऑल सेलिब्रेट आर डी बर्मन ऑल्सो, बट यू नो जब मैंने सुना दैट आई मीन वंस आई स्टार्टेड डूइंग आर गिव अवे वाला गेम एंड आई रियलाइज सो मेनी ऑफ आर डी बर्मन सॉन्ग्स आर एक्चुअली रिप्ड ऑफ, मेरा ना थोड़ा मूड वहीं ऑफ हो गया. मैंने कहा यार ये तो फेल हो गया थोड़ा सा, तो इसीलिए अब उनकी उनके पॉइंट्स मेरे मेरे हिसाब से थोड़े से गिर गए हैं. लेकिन आप ये गाना इन्जॉय करिए, कोई बात नहीं, आर डी बर्मन का नहीं है, डोंट वरी.

एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता, फनेशिया अलोंग विद उमर ख्वाजा, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इंश्योर होम लोन्स, दे आर ऑल डूइंग ए वेरी वेरी वेरी स्पेशल वर्कशॉप गणपति के शुभ अवसर पर. भाई, हमारे यहाँ पे तो बड़े अच्छे से गणपति मना रहे हैं फनेशिया के ऑफिस में, और आप भी बना सकते हैं. कैसे? अगर आपके बच्चे हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 12, एंड यू नो यू आर थिंकिंग लाइक मे बी वी ब्रिंग अ लिटल बिट ऑफ द इंडियन कल्चर बैक टू दैम, बिकॉज अमेरिका में रह रहे के आई मीन नॉट एवरीबडी इज अकस्टम टू द इंडियन कल्चर. आई नो त्यौहार उस तरह से नहीं मनाते हैं जैसे हम इंडिया में मनाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है देन यू कैन टेक योर किड्स टू द क्ले गणेशा मेकिंग वर्कशॉप ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 12. स्पॉट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड, सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर इट वे बिफोर टाइम. दिस इज इपी द हिपी, यू आर स्टिल लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस लाइक ऑलवेज. तो मेक श्योर यू टेक योर किड्स टू दैट वर्कशॉप, एंड या इट्स गोना बी सुपर वन, एंड लेट देयर इनर क्रिएटिविटी शाइन. तो इसी वजह से मैं आपको एक बड़ा अच्छा गणपति का गाना सुनाने वाली हूँ, एंड आफ्टर दैट वेन यू कम बैक एट 8 o'clock, then we are going to play our giveaway game. आज का giveaway है from Mirage Lounge, and like I said, इस पूरे महीने का giveaway वही होगा, तो make sure you tune in. And then you guys, this giveaway I'm going to select 2 winners like always, so yeah, stay tuned.

भाई हमें वो डायलॉग सुनने की तो जरूरत नहीं है, आप ये गाना सुनिए, डायलॉग से बेहतर गाना है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: 90s ke gaane sirf hits nahi, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
13: And guys, it is 8:05 on the clock and you are still listening to Funasia Radio 104.9 FM. And this is your bestie, Ippy the Hippie, only here on my show. An evening in Dallas. भाई 8 बजे इवनिंग काउंट होता है कि नाइट होता है? मुझे तो लगता है 8 o'clock is like night. But for some people, it can also be a late evening, right? Especially if you're like, you know, I don't know, one of the late risers or something. Late sleepers, right? So anyways, without further ado, let's go into the next section of our show, जो कि है हमारा giveaway. Yes, guys. आज का giveaway है from Mirage Lounge, जहाँ पे आपको premium hookahs मिलेंगे, delicious bites, cocktails, live music, DJ nights. Enjoy happy hour from Monday to Thursday, सुबह 11 बजे से 6 p.m. तक. That means if you are a day drinker, which is totally not like me, because I do not drink. However, if you like it, that's totally A-okay. You can go between Monday and Thursday. पता चले अपने दफ्तर के काम के साथ एक दो लगा भी लिया था क्या चलेगा यार. From 11 से 6 बजे तक हैप्पी आ रहे हैं. सोच लो बहुत लंबा हैप्पी आ रहे हैं. प्लस लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट्स. ओके, अगर आप आज का आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, देन आपको मिलेगा $20 ऑफ on a minimum of a $50 bill. So if you go out and hang out with your friends and you spend $50, then you get $20 off. So it's a win-win, right? Aaj ke giveaway ke liye do winners ko hum select karenge, theek hai? So without further ado, let's go ahead and play the game. So is hafte ka main game ye khel rahi hu ki I'm going to tell you a story and then you have to tell me the name of that movie. It is actually inspired... This movie is actually inspired by one of Hollywood classic movies, which actually features Audrey Hepburn also. I love Audrey Hepburn. Pata hai, mere room mein na bada sa ek poster bana hua hai Audrey Hepburn ka, and I'm like, okay, bestie, tell me what to do. She's pretty iconic. So, anyways, game khelte hain. Hamara game ye hai. To main aapko story bata rahi hu, aapko mujhe movie guess karke batana hai, theek hai? So, let's start. Once upon a time in a far, far away land, there were two brothers. Dono bahut ameer the, you know, pahadon mein rehte the, kahin Shimla mein rehte the. Aur unke ghar pe unka ek driver tha. Driver ki ek beti thi. Beti ko chote wale bete se pyar ho jata hai. Lekin chota wala beta was a complete Casanova, you know. He used to just flirt around with a lot of girls. Aur ye isko, is ladki ko kabhi ghas nahi dalta tha. Kyunki ye ladki thodi si... लोअर क्लास की थी, ड्राइवर की बेटी थी, यू नो शी वॉज एजुकेटेड श्योर, बट लाइक शी यूज टू ड्रेस वेरी सिंपली, नॉट हॉट, यू नो वेरी सिंपल गर्ल. तो होता यह है कि वो लड़की कहती है बेटा मैं हॉट बन के दिखाती हूँ, फिर मुझे फिर कैसे रिजेक्ट करेगा. फिर वो बॉम्बे जाती है, मॉडल शॉटल बन के आती है, हॉट शॉट बन के आती है, एंड देन दिस गाय इज परस्यूइंग हर. और हमारी कॉल भी आ गई इतनी देर में, ले तो आई थिंक अरे कॉल आके कट भी गई, कोई बात नहीं. अगर आप कॉल आ गई ले लो. लेट्स सी इफ वी हैव आवर विनर टुडे. हाय, कैन यू हियर मी?
14: हाय.
13: हाय, पहले तो अपना नाम बताइए. वत्सला. ओके वत्सला, हाउ आर यू वत्सला? लॉन्ग टाइम.
14: आई एम गुड, हाउ आर यू?
13: या वेरी गुड,
14: एक्चुअली लॉन्ग टाइम.
13: तो
14: ये दिल लगी
13: क्या बात है, शानदार प्रदर्शन, वेरी गुड. आपको पहला वाला गिव अवे मिल जाता है. अगर मैंने आपका कॉल कट गया बाई चांस, ठीक है, तो देन यू हैव टू क्या बोलते हैं, कॉल मी बैक एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है?
14: यस
13: यस, जस्ट स्टे ऑनलाइन, जस्ट स्टे ऑनलाइन.
14: यस,
13: हाय, कैन यू हियर मी?
15: हेलो.
13: हाय, कैन यू हियर मी?
15: हाँ जी.
13: हाँ जी, अपना नाम बताइए और आंसर बताइए.
15: ये दिल लगी.
13: हाँ, पहले अपना नाम तो बताइए भाई.
15: चिंतन पारेख.
13: चिंतन पारेख. चिंतन पारेख जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी जीत चुके हैं आज का गिव अवे. भाई तालियां बजाया जाए वत्सला और चिंतन पारेख जी के लिए जोरों शोरों से. एग्जैक्टली. तो चिंतन जी आप लाइन पे बने रहिए, उसके बाद मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, लेकिन एक गाना मैं प्ले करती हूँ तब तक, ठीक है?
15: ठीक है.
13: ओके गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए, इसी मूवी का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे.

Guys, this is Ippy the Hippie, and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is my show. An evening in Dallas, जो अभी रात भी हो चुका है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हुए, guys, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई dinner time थोड़ा pass हो चुका है, लेकिन if you haven't had dinner, you should definitely check out Page 3 Eatery, क्योंकि उनके पास amazing food है, like whether you're looking for appetizers or dinner or mocktails, it's like the perfect hangout spot, whether you're looking for bold Indian street food and it's, you know, in a modern flair, चाहे brunch, lunch, dinner date या जो भी है, foodie meetup, they bring the perfect mix of फ्लेवर एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. तो गो चेकआउट पेज 3 ईटरी एट हब 121. यहीं पे है, फनेशिया के ऑफिस के पास भी है, एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर. दे वेरी ऑफ्टन हैव लाइक दीज रियली अमेजिंग डील्स, और यू कैन कीप चेकिंग आउट देयर पेज एट page3eatery.com. ठीक है, उनके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं. यू कैन इवन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. मे बी यू गेट टू नो सम कूल डील्स, बिकॉज पता है 4 सितंबर को उन्होंने जो जन्माष्टमी के अवसर पर, दे वर गिविंग आउट फ्री श्रीखंड टू ऑल द डाइनर्स. सो यू नेवर नो, मे बी यू गेट फ्री डिजर्ट ऑन द नेक्स्ट टाइम यू गो टू पेशरी रेडी. वैसे भी हॉलीडे सीजन आ रहा है, यू नेवर नो वॉट यू कैन गेट. तो इट इज 8:24 ऑन द क्लॉक, एंड आई विल टॉक टू यू राइट आफ्टर दिस सॉन्ग एंड दिस रिली

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
4: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
0: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: morning, guys. We are back. This is Ippy the Hippie, and you're still listening to Funasia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. जैसे आपको पता है 8:30 ये क्या होता है तो इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया, इंग्लिश लिटरली इंग्लिश हो गया. कोई बात नहीं, मैंने 8:30 जिंदगी में पहले कभी नहीं बोला, लेकिन कई कई बार ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ. तो इसीलिए गाइज, इट इज 8:39 ऑन द क्लॉक. हैव यू अमेज्ड योर सेल्फ समटाइम्स अ वॉट यू से? आई हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स. दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स. ओके गाइज, इट इज 8:39 ऑन द क्लॉक. और जैसे कि आपको पता है 8:30 के बाद हमारा स्पेशल शुरू होता है, वेयर वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, गॉसिप, यू नो, केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? इफ यू फॉलोड माई शो फॉर ऑल दीज मंथ्स, देन यू नो दैट दिस इज वॉट वी डू. तो आज जैसे आपको पता है, इस हफ्ते का हमारा स्पेशल था रिलेशनशिप्स एंड न्यूरोसाइंस. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप्स, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लव रादर, व्हिच इज अट्रैक्शन. क्योंकि लव एंड ऑल तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है अट्रैक्शन. तो हमारा सेकंड स्टेज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ अस, द स्मिटन ब्रेन. ओके, दैट्स व्हाट द डे टू इज ऑल अबाउट. डे टू Today we are talking about the smitten brain, yani ki falling in love, yani ki being obsessed about that person. Theek hai? Yesterday we talked about the attraction, the first spark, dopamine, racing heart. Jab aap notice karte ek stranger out of the blue and suddenly, you know, you're like, OMG, who is that? Today we're going a little further. Today's question is, what happens in your brain when you actually fall in love? Really? Properly, and you can't really stop thinking about them. You're checking your phone every 10 minutes. Your social media stalking them, you know, checking their Instagram profile, checking their Facebook profile, checking their stories, you know. Arey, stories mein mere baare mein to kuch nahi dala. OMG. Here's the headline before we even start. Neuroscientists have literally put people who describe themselves as intensely in love into brain scanners. But then what did they find? What they found changed how we understand romance forever. So now let's get into it. ठीक है? तो first of all, let's analyze inside the brain of someone madly in love. So here's the landmark study. Anthropologist Helen Fisher, along with Lucy Brown and Art Aron, they ran fMRI scans on people in these early and intense stages of romantic relationships or romantic love. The people who on questionnaires वैसे तो scored extremely high on passionate love scales, लेकिन they'd show these participants a photo of their loved one जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, and then a neutral photo of some random acquaintance and back and forth, and they saw how the brain is lighting up, you know, when they keep switching these photos. उसका result क्या था? इस गाने के बाद.
1: Oh yeah.

एग्जैक्टली गाइस, तो ओहो ये क्या हो गया. हम बात करेंगे उसके बारे में जो हम पहले ब्रेक में जाने से पहले हम पहले मैं बता रही थी. एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर, लूसी ब्राउन एंड एरनार्ड, दे रैन fMRI स्कैन्स ऑन पीपल हु आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लव एंड रिलेशनशिप्स. एंड मतलब ऑन द क्वेश्चनर इट सीम दैट दे वर रियली हाई ऑन पैशनेट लव स्केल्स. लेकिन उनको उनके जो फेवरेट पसंदीदा आदमी या पसंदीदा औरत की फोटो दिखाई गई, एंड देन दे वर शोन अ फोटो ऑफ सम रैंडम पर्सन, एंड देन दे सॉ हाउ देयर ब्रेन्स एक्चुअली लिट अप. तो इसका रिजल्ट क्या था? व्हेन लुकिंग एट देयर लव वंस फोटो, एन एक्टिविटी स्पाइक्ड इन देयर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, दैट इज द VTA. जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, द सेम डीप प्रिमिटिव रीजन दैट वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, जो हमारा रिवॉर्ड और मोटिवेशन वाला सेक्शन है ब्रेन का. तो रिमेम्बर, याद है आपको डोपामिन वाला रिवॉर्ड वाला सेक्शन, कि आप कुछ करते हो देन योर ब्रेन लाइट्स अप एंड यू नो इट्स लाइक दैट रिवॉर्ड एरिया. व्हाट्स रिमार्केबल इज दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, पार्ट ऑफ व्हाट इज समटाइम्स नोन एज द रेप्टिलियन ब्रेन. यू नो हाउ यू नो वी हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो दिस इज शेयर्ड बाय ऑल मैमल्स. लव इन दिस सेंस इज सिंपली अ प्योर, सिंपली जस्ट सिंपली अ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इमोशन. तो मतलब सब सबके दिमाग में वही सेम रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, सिर्फ ह्यूमन्स के दिमाग में नहीं है, एनिमल्स के दिमाग में, सारे मैमल्स के दिमाग में वो सेम रिवॉर्ड सिस्टम वाला है, लेकिन ह्यूमन्स ने उसको लव का नाम टाइटल दे दिया है. एंड इट इज सिंपली मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इमोशंस. इट इज रनिंग ऑन एवरी ओल्ड मशीनरी दैट इज देयर, द सेम मशीनरी इन्वॉल्व इन वॉन्टिंग, क्रेविंग एंड परस्यूइंग रिवॉर्ड्स. आपने कभी अपने आप को फील किया दैट यू आर कॉन्स्टेंटली क्रेविंग दैट शुगर वाली क्रेविंग, या फिर द स्ट्राइव टू बींग द हाई अचीविंग पर्सन इन योर क्लास, 90% लाना, ऑल ऑफ दैट सेम. अलॉन्ग साइड VTA एक और रीजन है, इसको कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ऑल्सो एक्टिवेटेड, अ रीजन दैट इन्वॉल्व इन रिवॉर्ड डिटेक्शन एंड इंटरेस्टिंगली इन लर्निंग वॉट टू एक्सपेक्ट एंड प्रिडिक्टिंग रिवॉर्ड्स. फिशर्स इंटरप्रिटेशन वॉट वॉज इट, दिस इज वाई लव डजेंट फील पैसिव, दैट्स वाई इट फील्स लाइक यू नो जब वेन यू आर परस्यूइंग अ पर्सन इट फील्स लाइक अ ड्राइव, अ मोटिवेशन एंड ऑलमोस्ट लाइक अ मिशन. यू नॉट जस्ट इंजॉइंग अ पर्सनस प्रेजेंस, योर ब्रेन इज एक्टिवली वर्किंग टू ऑब्टेन एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद देम. इन द सेम वे इट ड्राइव यू टू सीक आउट फूड वेन यू आर हंग्री. तो गाइज, प्यार और भूख एक चीज होती है अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्चर्स, इजंट इट कमबख्त इश्क. तो गाइज, हम और भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
4: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
3: And pistachio lamb chops,
4: full on flavor ka fusion.
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
7: We need to talk.
8: अब क्या हुआ?
7: Nothing. It's not you.
8: Oh no.
7: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Sadia.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

गाइज, वो गाना जो आपने सुना था वो सफ़ी की रिक्वेस्ट थी। सफ़ी जो कि हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर कॉलर है, सिर्फ मेरे शो पे नहीं सबके शो पे वो कॉल करके रिक्वेस्ट करते हैं। ही लव्स द रेडियो। तो सफ़ी, आई होप आपको ये वाला वर्जन पसंद आया। मुझे ये वाला वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स नुसरत जी की आवाज़ में, दी ओजी कवाली सिंगर। आई मीन आई डोंट थिंक दर्स एनी वन लाइक नुसरत जी ऑन दिस प्लानट। सो उनकी आवाज़ में था ये जो हल्का हल्का सुर। उनसे रिक्वेस्ट करते करते आई गॉट अनदर रिक्वेस्ट, जो मैं थोड़ी देर में बाद, थोड़ी मतलब मे भी 1-2 मिनट बाद में लगाती हूँ, लेकिन उसके पहले लेट्स कंटिन्यू आर डिस्कशन। यू नो नाउ हम बात कर रहे थे ब्रेन के सर्टन न्यूरो रिसेप्टर्स के बारे में, राइट? डोपामिन के बारे में, दैट रिवॉर्ड रिस्पॉन्स, आई मीन द VTA। यू नो जब प्यार इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, इट्स लाइक यू नो दैट दैट रिवॉर्ड रिस्पॉन्स जो सब में होता है, हमने उसको प्यार का नाम दे दिया है या जो भी है। तो अब ये चीज़, नाउ हियर इज द पार्ट विच इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग, दीज आर ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम ब्रेन रीजन्स विच आर ऑल्सो एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कोकेन इंटॉक्सिकेशन। तो आई मीन आई एम होपिंग आप लोगों ने कभी नहीं लिया है, बट अगर आपने कभी यू हैव ट्राइड सम इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, आई होप नॉट, बिकॉज देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। हाउएवर इफ यू हैव, देन यू विल प्रॉबली नो दैट दोज रिसेप्टर्स एंड लव रिसेप्टर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। फिशर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हेलन फिशर, शी सेड पब्लिकली मेनी टाइम्स दैट रोमांटिक लव शेयर्स डीप न्यूरोलॉजिकल ओवरलैप विथ अडिक्शन। मतलब प्यार तो एक अडिक्शन जैसी ही है, दैट्स वॉट शी सेड, एंड नॉट एज अ मेटाफर बाय द वे। ऐसा नहीं कि कोई फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा कुछ नहीं, बट स्ट्रक्चरली एट द लेवल ऑफ ब्रेन सर्किटरी, आपके अंदर की जो ब्रेन की जो सर्किटरी है, लाइक दैट। दैट्स वाई अर्ली लव, जो पहला पहला प्यार होता है या नया प्यार होता है, इट फील्स लाइक यूफोरिक, ओके? एंड वन मोमेंट यू आर लाइक ओ एम जी, ये क्या हो रहा है जिंदगी में, ओ वाओ, व्हाट एम आई फीलिंग, ऑल दीज फीलिंग्स, यू नो यू गेट दिस हाई, एंड द नेक्स्ट मिनट यू आर डेस्परेट, यू लाइक अरे यार कॉल नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, गोस्ट कर दिया, 1 घंटा हो गया, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं, यू नो वी ऑल बीन थ्रू दैट, राइट? द वाई बींग अपार्ट फ्रॉम अ न्यू पार्टनर कैन ट्रिगर समथिंग क्लोज टू लाइक विड्रॉल सिम्टम्स फ्रॉम से अ कोकेन अडिक्शन और अल्कोहल अडिक्शन। वाई पीपल डिस्क्राइब नीडिंग, कोट एंड कोट नीडिंग टू सी समवन एंड नॉट जस्ट वॉन्टिंग टू सी समवन। आप किसी को लाइक आई नीड टू सी माई पार्टनर, आई नीड टू सी माई बॉयफ्रेंड, आई रियली रियली नीड टू, इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू सी, बट दे ऑफन यूज द वर्ड आई नीड।

नीडिंग टू सी समवन एंड नॉट जस्ट वॉन्टिंग टू सी समवन. आप किसी को लाइक आई नीड टू सी माई पार्टनर, आई नीड टू सी माई बॉयफ्रेंड, आई रियली रियली नीड टू. इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू सी, बट दे ऑफन यूज द वर्ड आई नीड टू सी. ठीक है, तो हम ये बातें और भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये गाना राहुल और उनकी पूरी फैमिली के लिए. भाई राहुल, मुझे तो कोई प्यार नहीं हुआ है, मैं सिर्फ प्यार की बातें करती हूँ अनफॉर्चुनेटली. मेरे को जिस दिन होगा आप सबको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आई एम श्योर रेडियो पे बता दूंगी उसके बारे में, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ ये रिसर्च ही है जो मेरे पास है. पर आपके लिए ये गाना सांसों की माला, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एंड आई लाइक, क्योंकि हम नुसरत जी की आवाज में सुन रहे थे, सो लेट्स कीप दैट वाइब गोइंग. दिस इज सांसों की माला इन द वॉइस ऑफ नुसरत फतेह अली खान. बहुत लोगों ने गाया है, बट आई लाइक दिस वर्जन बेस्ट.

गाइस वो गाना था सांसों की, कितना प्यारा गाना है. मतलब आई लव दैट. एंड दिस वाज द टाइम व्हेन ऑफ कोर्स नुसरत जी वाज एट हिज पीक. तो गाइस आगे बढ़ते हुए भाई, ये अपने दिमाग का ध्यान रखते रखते, प्यार एंड दिमाग का ध्यान रखते रखते, अपने हार्ट का और पूरी सेहत का ध्यान भी रखिए. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हियर फॉर यू. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बिकॉज आई नो दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव. समटाइम्स इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव इफ यू आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम योर कंपनी और योर यूनिवर्सिटी. इट कैन बी लाइक क्लोज टू $300-$400 अ मंथ, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? पैशन हेल्थ केयर, दे हैव ए न्यू प्लान. यू नो वट दैट प्लान इज? दे हैव समथिंग नोन एज पैशन हेल्थ डिरेक्ट, एंड दैट इज ओनली फॉर $85 अ मंथ. इट्स लाइक अ मेंबरशिप सर्विस, काइंड ऑफ लाइक अ सब्सक्रिप्शन सर्विस. ओके, इट इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप, प्रिवेंटिटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ वाया अप्रोप्रिएट केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. तो इट साउंड्स लाइक अ रियली गुड डील फॉर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. पैशन हेल्थ, योर हेल्थ इज देयर पैशन. ओके, जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस. सो दिस इज नॉट फॉर थिंग्स लाइक सर्जरी और एनीथिंग लाइक दैट, बट फॉर योर रेगुलर डॉक्टर चेकअप्स, विजिट्स. आई थिंक दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु स्टिल नीड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. तो ये नेक्स्ट गाना मैं रिक्वेस्ट ले रही हूँ, लेकिन उसके पहले गाइज लेट्स कंटिन्यू आर डिस्कशन. नाउ जैसे मैंने बोला था, द अर्ली स्टेजेस ऑफ लव समटाइम्स हैज बिन लिंक्ड टू एडिक्शन और लाइक समबडी ट्राइंग सम इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ इसमें ना एक और ट्विस्ट है. इन दी स्कैन्स जो हेलन फिशर ने स्कैन किया था, एरियाज ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद क्रिटिकल जजमेंट एंड फियर, दिस में पार्ट्स ऑफ amygdala and areas of prefrontal cortex responsible for social judgment, this actually showed it reduced activity. Iska matlab kya hai? There are these researchers, Samir Zeki and Andreas Bartels at University College London. They ran similar studies and they found a similar pattern. Kya mila unko? They found that love appears to quiet the brain regions which is responsible for negative judgment. ये तो मतलब नई बात कुछ है नहीं. अगर आप किसी से प्यार करते हो, sometimes you overlook their flaws. I mean, we all know that, right? And depending आपका प्यार कितना solid है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, you often ignore those red flags that the other person has. We also forget, like I said, negative judgments and social scrutiny of the loved one. Unko hum unke red flags dekhte hi nahi hai. This gives real neurological backing to this old phrase ki love is blind. Your brain is, in a very literal sense, is dialing down its own skepticism circuitry while you are newly in love. To guys, pyar mein padhna bahut achhi baat hai, lekin thoda dimag ko consciously activate bhi kiya karo. ठीक है, मतलब सिर्फ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए. तो आप ये गाना एंजॉय करिए. वी विल कम बैक आफ्टर 9:30 एंड कंटिन्यू.

0: তাই চাই তো দিসপর্চার কাণ্ড তাই সরমীয়
1: আমরে মিও তোবে চাই তো এই ক্যা গা রাই
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं गा के सुनाओ ना
2: गा के अच्छा

भाई हमने लव के बारे में बात किया, वी टॉक्ड अबाउट द ब्रेन सर्किटरी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन एक चीज के बारे में हमने बोला ही नहीं, विच इज सेरोटोनिन. वी मेंशनड अबाउट इट येस्टरडे ड्यूरिंग द अट्रैक्शन स्टेज. वेल इट स्टेज लो, लेकिन तभी भी है क्योंकि फॉलन इन लव वाले स्टेज में तभी भी सेरोटोनिन होता है, लेकिन यू नो इट स्टेज लो. ओके, रिसर्चर्स लिंक दिस टू इंट्रूसिव ऑब्सेसिव स्टाइल थिंकिंग, कि आप हमेशा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मिस्टर एक्स वाई जी, मिस एक्स वाई जी, हू एवर इट इज, एंड दे आर थिंकिंग सो कॉमन इन न्यू रिलेशनशिप्स दैट द एबिलिटी टू फोकस ऑन एनी थिंग एल्स इज बेसिकली गॉन. कि आप किसी भी काम में नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो ढंग से, नींद नहीं हो पा रही है. हैपन्स, वेरी रिलेटेबल, राइट? द गुड न्यूज इज दिस फेज इज नॉट परमानेंट. ओके, मोस्ट रिसर्च सजेस्ट दैट इंटेंस अर्ली लव ब्रेन पैटर्न्स टिपिकली ईज विद इन मे बी लाइक फर्स्ट 12 to 18 months, मतलब साल भर से 1.5 साल तक रहेगा, लेकिन ये वाला जो फेज है जिसमें यू आर नॉट एबल टू फोकस एंड यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग, ये अराउंड 1-1.5 साल के बाद चला जाएगा, देन यू कैन गो ओवर इट. आई थिंक दैट्स प्रिटी फेयर. फ्रॉम वॉट यू थिंक फ्रॉम योर एक्सपीरियंसिस, राइट? एंड एज द ब्रेन एंड रिलेशनशिप दे शिफ्ट इन टू अ न्यू फेज, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, 1 साल बाद रिलेशनशिप इट्स सेल्फ चेंजेस इट्स ओन काइंड ऑफ डायनामिक्स, राइट? दे When it enters into a new phase, then the serotonin fala phase also goes away, which, spoiler alert, is what we are covering on day 5. Day 5 matlab today is day 2. I think the day 2 wala topic is gonna stretch into day 3 also. Honestly, like, I think we have to continue this conversation tomorrow because it's so fun, right? तो guys, आप एक ये गाना सुनिए, लेकिन गाना सुनने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. टेक्सस प्राइमरी केयर भी है एंड देर गोना टेक केयर ऑफ यू. फॉर द लास्ट 13 ईयर्स देव बिन टेकिंग केयर ऑफ आर कम्युनिटी एंड अब उनका नया नाम है और नया लोकेशन भी है इन फ्रिस्को एंड इट्स कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल. इट इज़ फाउंडेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्य. इट ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM to 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. गाइज, इट इज 9:39 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ अराउंड 10-15 मिनट और रहने वाली हूँ. आई होप यू इन्जॉय टूडेज डिस्कशन. आप जिन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला दैट यू आर रियली लविंग द कॉन्वर्सेशन एंड यू आर रियली लविंग माई शो एंड यू आर इन्जॉइंग वट आई एम टॉकिंग अबाउट, थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएटेड. आपको जिनको मेरा म्यूजिक पसंद आ रहा है, मैं जैसे आई डोंट स्टिक टू अ पर्टिकुलर जॉनर, अ पर्टिकुलर स्टाइल, मैं सब मिक्स करती हूँ, फिल्मी, नॉन फिल्मी, 90s, 70s, डिस्को, एवरीथिंग, मॉडर्न स्टफ, इंडी, जैज, यू नो, एवरी डे इज अ डिफरेंट मूड एंड दैट इज वाई इट्स अ डिफरेंट प्ले लिस्ट. वी आर नॉट गोना प्ले यू द टिपिकल यू नो फनेशिया वाला जो नॉर्मल आइटम नंबर वाला प्ले लिस्ट है. वी आर नॉट डूइंग दैट. वी आर प्लेइंग टेस्टफुल म्यूजिक हियर, राइट? तो आप ये गाना एंजॉय करिए एंड वी विल बी बैक इन अ जिफी.

भाई मेरे पास अभी कॉल आ गई, कॉल थोड़ी लंबी चल गई, आई होप यू डिडंट मिस मी टू मच। तो गाइज इट इज 9:52 ऑन द क्लॉक। जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी फाइनेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं प्यार व्यार के अलावा, कई बार प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ध्यान रखना भी जरूरी है, देन यू शुड रीच आउट टू CPA सुधीर पाए, बिकॉज दे हेल्प बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सोच रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हैं, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स द राइट सोल्यूशन फॉर यू। विजिट mytimeequity.com या फिर कॉल 4697021272। तो गाइज बिफोर वी वाइंड अप टूडेज डिस्कशन, हम जैसे बोल रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट लव एंड एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली अभी तो टाइम खत्म हो गया, तो मैं आई एम नॉट गोना गो इन टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट आई वॉज गोना गो इन टू, लेकिन कल ज्वाइन करिए। वी यूजली स्टार्ट दिस डिस्कशन अराउंड 8:30 एंड गो ऑल द वे टू 10 o'clock। वी टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू लव। टुमोरो वी आर गोना टॉक अबाउट वाई लव रियली फील्स लाइक एन एडिक्शन, ठीक है? तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। केमिकली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, यू नो, लाइक हॉर्मोन्स और वट एवर इट इज, एंड वी गोना हैव दैट डिस्कशन एंड प्ले लॉट्स ऑफ अमेजिंग म्यूजिक। आई विल टेक सम रिक्वेस्ट टू, इफ यू हैव एनी प्लीज फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू हैव अ वंडरफुल वेंसडे। कल थर्सडे है, टुमारो इज माई लास्ट डे हेयर ऑन फनेशिया रेडियो दिस वीक, बट आई विल सी यू tomorrow for sure, and then Monday. Have a wonderful rest of your day. Bye bye.

0: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
1: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: बारटेंडर से मैं ये कहता हूँ,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक।
2: अच्छा, कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए।
2: अशरथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा। हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन, शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी।

104.9 FM. Turns up the heat in Dallas.

0: tracks that put you on the right track.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हूँ।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
5: Gorgeous twins Sukriti and Prakriti ready to drop their biggest song of the year. The footage of the video being shot has leaked.

0: कहीं पे वो नलके की टप टप है।
1: कहीं पे वो खाली सी खिड़की है,
0: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
1: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
0: कहीं कुछ

0: जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, हो।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी के। रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, वो डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: मैं मंदर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। मैं मस्जिद क्यों जावा, मेरा यार खुदा है।
1: बिल्लो

वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी उसे तकते है उम्र गुजारूं

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

Lights, Mike, Bollywood, Fallasia.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

FM turns up the heat in Dallas.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: आकर

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Weekend ka plan? Abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

Let's go ahead and get started with our program here this morning. It is Thursday, the 10th of September. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम. वेलकम टू द शो.

0: If you're planning to move and you need to ship anything all the way from documents to boxes, your entire household or even your car, SFL Worldwide, you get complete door-to-door shipping with them and the moving services, not just within the United States, but to India or anywhere worldwide. SFLWorldwide.com. You can call them 800-691-2335. 800-691-2335. SFL Worldwide. It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: Haan.
7: Ghar relocate karni hai?
8: Haan.
7: Gaadi bhi transport karna hai?
8: Haan, bhai, haan.
7: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call karo.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur dunya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: वी नीड टू टॉक।
15: अब क्या हुआ?
14: नथिंग, इट्स नॉट यू।
15: ओह नो,
14: इट्स द डिस्टेंस।
15: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
14: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
16: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
17: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
18: Ocho.
19: Hoko.
18: Ocho.
19: Hoko.
18: Ocho.
19: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार।
19: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
16: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
16: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है। तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
20: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program. If you are just joining us, we'll get you caught up on this beautiful Thursday morning. It's the 10th of September today, and we tied 101 degrees yesterday. We should be about, our record again is 101 for today also. Let's see if we tie that, or but we will definitely be at 100 degrees. The good thing is that we are not under a heat advisory, and believe it or not, but from the northwest, we might see something called rain in some areas. North of I-20, the northern half of our North Texas Metroplex area, 50-50 chance 6 o'clock onwards this evening, from 6 to midnight. Let's hope we can break that 8-week dry spell. And let's hope we can do it today, tonight.

0: some more messages from our other sponsors, and then I will have world news coming up shortly.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
2: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
4: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
5: अरे यार, घर मिल गया.
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
4: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी Why so many people are raving about him.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
11: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on FunAsia Radio.
12: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए,

रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game।

0: I have a giveaway coming up for you, but before that, let's listen to some more messages from our sponsors.
1: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Sadia! कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: One of India's most loved food brands is now in Frisco. From their famous chana puri and sandwiches to delicious curries and the legendary Hoko cold Coco, it's all here in Frisco. 20% discount is what they're offering with a valid student ID and a 20% discount for employees on lunch packs. It is available Monday through Friday during office hours, so please do go ahead and avail of that. But right now, you can win a free plate of Alu Tikki Chaat by answering a very simple question. I need the name of this movie and I will give the prize to the first person who calls me with the right answer. Here is the song.
14: Om Mangalam Mangalam, Om Mangalam Mangalam.

0: मेहमान तू।
1: अरे तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चो बच्चो बच्चो, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।
1: क्या बात है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: We need to talk.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
0: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
5: tujhe dekha to ye jana sanam
6: 90s ka romance 90s ki melodies aur wo legendary awaaz DFW get ready to relive the magic of Kumar Shanu live unforgettable 90s September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano gaiye jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane limited seats free parking aur meet and greet options available for tickets visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par presented by Focus Entertainment and Fortune Group

मस्त मलंग तो होना ही है, होना ही था, बिकॉज आप सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio. A very good morning to you, Dallas. Thursday आ गया है, फ्राइडे नहीं है, लेकिन फ्राइडे का फ्री ट्रायल जरूर है. वीकेंड अब नजर तो आ रहा है, बस हाथ में नहीं आ रहा है. दिस इज रुमिता और 10 से 12:30 तक हम आपके मिड मॉर्निंग को देंगे बॉलीवुड फ्रेश एंटरटेनमेंट, मसालेदार गॉसिप्स, मसालेदार खबरें, कुछ गेम्स भी होंगे हमारे साथ आज, और कन्फेशंस आपके हमारे, एंड डेफिनेटली वो एनर्जी जो आपके सुबह से लेके जो आपने ये थर्ड कप ऑफ कॉफी पी है ना, वो भी कभी नहीं मिलती. उस एनर्जी के साथ आज का शो मैं शुरू करने वाली हूँ, रहने वाली हूँ आपके साथ 12:30 तक. एंड टू लेट यू नो देयर इज आल्सो अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ माय शो जो थोड़ी देर में मैं रिवील करने वाली हूँ. यू नो आज का थॉट बहुत सिंपल है, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेस्टी का फोन आया एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आर एक्सपीरियंसेस टुगेदर थ्रू आउट दीज ईयर्स, और इसी बारे में मैंने सोचा एंड सोचा कि अब किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के लिए आपने ऐसा क्या किया जो नॉर्मली आप कभी नहीं करते. लाइक अपने दोस्त के लिए रियलिटी शो देखा, जैसे अरिजीत सिंह कर रहे, काजी तौहीर के लिए बिग बॉस देख रहे, या फिर सुबह सुबह उसके साथ अपने दोस्त के साथ जॉगिंग पे चले गए, या कोई हॉरर मूवी झेली, या उनकी शॉपिंग में ऑनेस्ट ओपिनियन दे के अपना रिलेशनशिप खराब किया. आई नो बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, इसीलिए वॉल्यूम अप, क्योंकि थर्सडे को थोड़ा सा फिल्मी बनाते, समझे समझे क्या जनाबे आली.

0: फर्स्ट क्लास तो हो रही है मेरी मॉर्निंग, क्योंकि मेरी बात चल रही है आप लोगों से एंड डेफिनेटली आपकी भी मॉर्निंग फर्स्ट क्लास हो ही रही होगी, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रमीता. अब 18 मिनट्स पास्ट 10, टुडे इज सितंबर 10th, थर्सडे है. आई नो थोड़ी देर पहले मैं वही बोल रही थी, वीकेंड ऑलमोस्ट आ ही चुका है, इसीलिए गपशप का लेवल थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ाते हैं. और बॉलीवुड गॉसिप्स तो हमारे साथ डेली बेसिस से चलता ही रहता है. सुनने में आया है कि अरिजीत सिंह रिपोर्टेडली बिग बॉस पहली बार देखने वाले. नो, दिस इज नॉट द न्यूज दैट आई एम गिविंग यू, और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज है जो शेयर करने वाली है. बट द रीजन इज सो स्वीट कि मुझसे रहा नहीं गया, एंड इट्स सो सिमिलर टू द थॉट टुडे दैट आई एम डिस्कसिंग ऑन गपशप गली टुडे. द रीजन वो शो का ड्रामा झेलने नहीं वाले, जस्ट बिकॉज उनके दोस्त अंदर है, उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड काजी तौकीर एंड अ फेलो कंटेस्टेंट ऑफ देयर रियलिटी शो विच एक्चुअली ब्रॉट देम टुगेदर एंड गेव देम द इनिशियल प्लेटफॉर्म विच वॉज फेम गुरुकुल. अरिजीत और काजी की फ्रेंडशिप है ना फेम गुरुकुल के 2005 के पाँच से चली आ रही है. इमेजिन 21 ईयर्स लेटर एक फ्रेंड रियलिटी शो हाउस में है और दूसरा जो इतना बिजी है, द मोस्ट आई मीन द नंबर वन सिंगर इन द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, ही इज रूलिंग विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड ही इज टेकिंग आउट टाइम टू वॉच दिस रियलिटी शो जो 20th सीजन में है. यार ट्रू फ्रेंडशिप वही होती है यार जो आपको एयरपोर्ट ड्रॉप भी करे और आपका फेवरेट शो का प्लॉट भी समझने की एक्टिंग करे. आई नो इन हिज बिजी शेड्यूल इफ ही हैज टेकन टाइम टू वॉच दिस बिजार रियलिटी शो, आई नो आई एम गोना ऑफेंड ऑल द बिग बॉस फैंस, बट इट इज व्हाट इट इज. और 20 साल से झेल रहे तो
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
8: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

26 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. और बात आज चल रही है कि ऐसा क्या अपने आपके मेन कैरेक्टर से निकल के कोई काम किया है अपने दोस्त के लिए. यार आई नो आज फ्रेंडशिप डे नहीं है, ना ही कोई ऐसा ओकेशन है जब हम दोस्ती की बात करें, बट कभी कभी अपने नियर एंड डियर वंस के लिए सोचना भी बुरा नहीं होता है, राइट? ऐसा कुछ जैसा जो आप नॉर्मली नहीं करते, बट फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर लव्ड वंस, यू हैव एक्सटेंडेड योर हैंड्स एंड यू हैव गॉन आउट ऑफ योर वे टू हेल्प देम, टू बी विद देम, टू एटलीस्ट मेक देम हैप्पी. एंड दैट what makes you happy. I want to know what you have done for your friend, for your near and dear ones. Zaruri nahi hai ke it should be only restricted to your friends. It can also be anything that you have done for yourself also. Jaise aap apne aap ke liye, apne primary care ke liye, you can definitely head on to the Texas Primary Care Clinic, which is proudly serving and caring our community for the past 13 years. And now with a growing brand new name and a second Frisco location, jo ki hai Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings the primary care, urgent care and in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics aur Himalayan MedSA services bhi. Aur ye sab kuch under one roof. It is open all the 7 days a week, and from 8 a.m. to 8 p.m. you can have or avail their services. You can also walk in anytime. Koi bhi appointment lene ki zarurat nahi hai. Keep listening to Funny Share Radio for more music, more information, and of course, more gupshup.

किसी ने बहुत ही सोच समझ के ये गाना लिखा था, बनाया था और पिक्चराइज किया था हमारे भाईजान सलमान खान के ऊपर। और बाद जब अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए कुछ करने का मौका आए तो भाईजान से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने का, उन्होंने जो बार सेट कर दिया है, लिमिट सेट कर दिया, आई डोंट थिंक ये किसी भी हद तक कोई भी इसे पार कर पाएगा। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। बात आज गपशप गली में मेरे साथ यानी कि रुमिता के साथ यही चल रही है कि अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने लिए कोई ऐसा काम आपने क्या कभी किया है जो आपके मेन कैरेक्टर से अलग हो या आउट ऑफ द वे हो। कुछ काम हम हॉबी के लिए नहीं, रिलेशनशिप मेंटेन के लिए भी करते हैं। लाइक क्रिकेट बिल्कुल समझ में नहीं आता, बट पार्टनर के साथ मैच देखकर कॉन्फिडेंट होके जो एक्सप्रेशन देना, ये वो अलग ट्विस्ट है। अपने दोस्त के डांस रील में बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा बनना भी आजकल एक कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए। अपने बच्चे के स्कूल की इवेंट के लिए रात को आप जो वोल्केनो का मॉडल बनाते हैं ना, और अगले दिन उसे प्रिटेंड करना कि उसने खुद किया है, ये भी तो आपके वो बचपन में क्राफ्ट क्लास में आपने नहीं सीखा था। बस अपनों के लिए आपने कुछ आउट ऑफ द वे कर दिया है। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, किसी के साथ वो मूवी देखना जिसका ट्रेलर देखकर ही आपका पेशेंस इंटरवल मांग रहा था, आपने पूरे 3 घंटे वो मूवी आपके लव्ड एंड नियर डियर वंस के साथ झेली है। सो स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। कॉल मी एंड टेल मी के मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, एक्चुअली वो तुम्हारा कोई भी हो सकता है, उनके लिए आपने एक्चुअली किया ही क्या। बेस्ट आंसर्स वुड बी ऑन एयर इन सम टाइम। फिलहाल कीप एंजॉयिंग एंड लिसनिंग टू दिस म्यूजिक ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम। दिस इज रुमिता।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: बेटा 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: हेलो, वीक इन लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 PM to 3 PM. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

That was Nora Fatehi's and Ayushmann Khurrana's sizzling chemistry from the movie Action Hero. सुन रहे हैं 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. और sizzling से याद आया, क्या आपने अभी तक Page 3 Eatery के sizzling kebabs try किए हैं? चलो kebabs छोड़ो, क्या आपने उनके पालक पत्ता चाट अभी भी try किया है? मैंने किया है एंड आई कैन अश्योर यू इट इज डिलीशियस एंड टोटली यम. लुक एट इट इन द हब 121 पेज 3 ईटरी. अगर आप अभी तक नहीं गए देन यू सीरियसली मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी टेस्टफुल विथ टेस्टफुल डिशेज विथ अ मॉडर्न फ्लेयर. चाहे वो बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड हो या फिर उनके फ्यूजन बाइट्स या फिर रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो देयर एंड एंजॉय दिस ब्लिस ऑफ टेस्टी फूड. ब्रंच हो, लंच हो, डिनर डेट हो या फिर ऐसे ही अगर आपको अच्छा खाने का मन हो, विजिट पेज 3 एट पेज एट Hub 121, which is located in McKinney. And for the menu, you can definitely explore more at the page3eatery.com.

54 minutes past 10 o'clock. You're listening to Gupshup Gali with me, Armita. और आज है September 10th, Thursday. हम बात कर रहे हैं about a lot of things today. हमने show शुरू किया with friends and friends going out of their way to help each other and do something, certain things, ताकि आप अपने relationships को importance दे सके rather than giving importance to what you enjoy or you feel. चलिए shift करते हैं थोड़ा about the reality TV shows that are going on around. हम लोग जब अपने अपने देश में रहते थे तो TV channels में हम national television में हम reality shows enjoy करते थे, but अब तो OTT platform में भी वो आ गए हैं हमें entertain के लिए, करने के लिए. अब entertain करने के लिए या हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे उनसे, ये तो एक debatable topic है. but मैंने notice किया है generally ना 3-4 category के reality TV show viewers होते हैं जिसे हम categorize कर सकते हैं. number one category वो है जो loyal viewer है. हर episode, live feed, promo, इंटरव्यूज, कंटेस्टेंट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है. कैटेगरी टू है ना वो क्लिप स्पेशलिस्ट्स है. पूरा शो कभी नहीं देखा, बस सोशल मीडिया में उनके क्लिप्स, रील्स, हर फाइट का वर्डिक्ट वो वहीं से जुगाड़ करते हैं कि यार मैं तो अपडेटेड हूँ, मैंने तो ये चीज़ देखी है. कैटेगरी थ्री होता है वो जो फोर्स्ड व्यूअर है. पार्टनर TV चला देता है या फोन देखते रहता है, फिर सडनली पूछता है यार उसने नॉमिनेशन में उसका नाम क्यों लिया. मतलब सामने आपके रियलिटी TV शो चल रहा होता है, देखने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, देखना भी नहीं है, बट जानना आपको सब कुछ है. और कैटेगरी फोर ये सबसे डेंजरस होते हैं. सीक्रेट व्यूअर है, पब्लिकली बोलेंगे मैं तो ये सब नहीं देखता, रियलिटी TV कौन देखता है, बट प्राइवेटली इनके सर्च रिजल्ट में वही आता है नंबर वन पे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो आप कौन से कैटेगरी में हो. कैटेगरी वन एज अ लॉयल व्यूअर, कैटेगरी टू एज अ क्लिप स्पेशलिस्ट, कैटेगरी फोर एज अ फोर्स्ड व्यूअर, या फिर कैटेगरी कुछ भी हो सीक्रेट व्यूअर है. ऑनेस्टली आंसर दिएगा. 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर. कॉल मी और मैं रहती हूँ आपके आंसर्स के इंतजार में.

0: You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Rumita. चल रहा है हमारा गपशप गली. बहुत सारी ढेर सारी बातें होगी, ढेर सारी म्यूजिक भी होंगी. On the other side of this break, I'll be back. तब तक breaks enjoy करो, because वो shows के लिए बहुत important है.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 ईयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
8: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
8: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
7: और एंटरटेनमेंट,
8: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
8: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
16: तुमसे मिलके दिल का है.
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

9 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. And ye jo khoobsurat sa gana tha, that was a request made by Shobha yesterday. But I couldn't play because हमारे सेगमेंट्स चल रहे होते हैं एंड इन बिटवीन वी कैन नॉट टेक रिक्वेस्ट बट टुडे अगेन शी वाज सो स्वीट शी कॉल्ड इन एंड आस्क्ड फॉर द सेम सॉन्ग टू बी प्लेड अगेन सो आई होप दैट आई हैड यू नो मेड योर डे समवेयर अ लिटिल एंड यू एंजॉयड दिस सॉन्ग एज मच एज आई did. This Gupshup Gali, we are discussing about a lot of things today and right now मेरे दिमाग में एक thought आया है कि भाई हमारे जिंदगी में क्रिटिक्स की कमी बिल्कुल नहीं होती है, चाहे वो फैन हो, क्रिटिक हो या पर्सनल सेंसर बोर्ड हो. हमारे लाइफ में ऐसा कोई डेफिनेटली एंड डेफिनेटली होता ही है. जैसे कि सैफ अली खान ने रिसेंटली शेयर किया है कि करीना कपूर को जब उनकी कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, हर रिएक्शन कैन बी प्रिटी डायरेक्ट. और एक्टर्स ना वो नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, तो हर रिलेशनशिप में एक ऐसा बंदा तो डेफिनेटली होता है कि वाओ आपने बहुत अच्छा किया, आपको रियली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एनकरेज करते हैं. और साइमल्टेनियसली कोई ऐसा भी होता है जो ऐसे आपके रिव्यूज आपको देते हैं ना कि चाहे आप सच सुने या ना सुने, चोट तो लगती है, मतलब करेक्ट नोट पे लगती है, इतना सच नहीं बोलना चाहिए था. आउटफिट हो, कुकिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या इंस्टाग्राम कैप्शन, घर का ऑनेस्ट क्रिटिक रिव्यू फ्री में मिलता है, लेकिन इमोशनल डैमेज का वो उसका इनवॉइस हम बाद में ले लेते हैं. क्या करें, ऐसा सपोर्टिव फैन भी चाहिए, क्रिटिक भी चाहिए, वेल विशर भी चाहिए. लाइफ में ऐसा होना तो जरूरी है. आई वॉन्ट टू नो आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है. मेरे लाइफ में इतने सालों में भी एक क्रिटिक कॉन्स्टेंट है और वो है मेरी मम्मी. आपका कौन? मम्मी, पापा, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, स्पाउस या आपके बच्चे या फिर कोई समवन वेरी स्पेशल.

listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. I've been getting a lot of calls और उनमें से एक caller है, हमारी listener है, जिनका नाम है लैला. उन्होंने बहुत ही sweetly अपने बच्चे जब उनको honestly opinion देते about how she is looking. I'm not going to say what she has said or what adjective she must have used, but honestly, उनके life में उनकी बेटी ही उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है. एंड वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि एटलीस्ट किसी के ऑनेस्ट ओपिनियन से आपका दिन सवर रहा है, या फिर आप अपने आप को सवार ले रहे हो कि ये नहीं, ये चीज़ जो वो बोल रही है या बोल रहा है, ऑनेस्टली आई शुड बी लिसनिंग टू इट. एंड वाई नॉट, बिकॉज आखिर वेल विशेज ही तो हमारे लाइफ के सबसे बड़े क्रिटिक है. एंड दैट इज एक्चुअली वॉट मैटर्स एंड इज वॉट इज हेल्पफुल for all of us. But अगर आपको financial advices की जरूरत है, then definitely get in touch with AG FinTax, जो offer करते हैं trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services, both for individuals और आपके business के लिए भी. So call करें 469-942-9888. That's 469-942-9888. या फिर visit कीजिए agfintax.com आज ही. फिलहाल द नेक्स्ट ट्रैक इज बाय लैलाज रिक्वेस्ट, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक ट्रैक शी हैज रिक्वेस्टेड. कीप लिसनिंग टू फनीशिया रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता.

दिस लेजेंडरी सिंगर, और नाम गेस करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारी सबसे चहीते सबसे फेवरेट, आई मीन आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट बॉलीवुड ने 90s, मिड 2000s, इनफैक्ट अभी भी अगर मेलेडी की बात आती है, मेलोडियस गाने की बात आती है, रोमांस की बात आती है, गानों में गले आई मीन आवाज़ में दर्द की अगर यू नो इफ यू

इनफैक्ट अभी भी अगर मेलोडी की बात आती है, मेलोडियस गाने की बात आती है, रोमांस की बात आती है, गानों में गले आवाज में दर्द की अगर यू नो इफ यू हैव टू डिफाइन द पेन इन समवन वॉइसेस, कोई भी जॉनर हो, दिस वॉइस इज has only one name and that is Sonu Nigam and you can also listen to this voice live on the 26th of September at the Credit Union of Texas Event Center in Allen because Sonu Nigam will be live in concert with his revolution happening on the 26th of September in Allen in Dallas. Of course you can get the tickets and further more information at The ticket master, tickets are still available. तो जाइए अपने tickets book कीजिए अपने partner के साथ अपने family के साथ अपने दोस्तों के साथ enjoy कीजिए this legendary voice of Sonu Nigam. And for further information, you can call 855-360-SHOWS. That is 855-360-SHOWS. And to let you know, this event is proudly brought to you by Funisha Network. क्योंकि हम ही हैं इनके Exclusive media partner. Stay tuned and keep listening to your favorite radio station, Funisha Radio. This is Gapshup Gali with me, Ramita.

0: For a free 15-minute consultation, NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
3: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
2: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com.

0: flavor on, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया
2: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग
3: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

47 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gapshup Gali with me, Rumit. एंड ये गाना सुनते ही ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है. एंड एग्जैक्टली हाउ इट इज पिक्चराइज्ड इन स्लो मो, एवरीथिंग इज सो प्रिटी, सो ड्रीमी, सो आई मीन समथिंग सो वेरी ब्यूटिफुल अबाउट दिस कंपोजिशन. एंड डेफिनेटली इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एट दिस रीसेंट टाइम्स. धड़क 2, I mean, those who have watched it can tell me and vouch for it, के about cast and discrimination, the entire story revolves so practically important हमारे life में, you know, some certain things which we cannot unsee or ignore but are definitely very important to get highlighted. I mean, I know बहुत सारी stories ऐसे होते जो you know we just bypass them, we just don't value them, but this film definitely will create a basic impact in your life. अगर आपने ये movie देखी है then definitely go for it, and नहीं देखी है तो definitely go for it and give it a try and must watch. मेरी recommendation है. I know आज फिल्मी Friday है नहीं but आप देख ही सकते हो यार, middle of the week देख लो. अच्छी मूवीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए. जो कि आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, अगर आपके प्लान में है घर खरीदना, अगर आज भी इस साल आपका चेकलिस्ट पूरा नहीं हुआ है ऑफ बाइंग योर न्यू होम, इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू प्लॉट, न्यू होम, और थिंकिंग ऑफ रीफाइनेंसिंग, देन for a personalized mortgage solution, you can definitely get in touch with Dream Home Mortgage, who has been helping families since 1998. Call kare Hussain Panjwani ko at 972-245-5626 or simply visit dreamhomemortgage.com, because Dream Home Mortgage is making your dream home happen.

You're listening to 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता. और अभी का जो गपशप है वो है कि अनिल कपूर हैज ट्राइड समथिंग न्यू अगेन. यस, दिस फेलो 90s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, हर एक डिकेड में ही इज रेलिवेंट, स्टिल इज, एंड ही इज स्टिल ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. एंड ही विल बी परफॉर्मिंग कव्वाली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर हिज अपकमिंग शो इंडिया के 1%, टॉप 1%, माइंड यू. गणेश आचार्य जो कि फेमस कोरियोग्राफर है इज हैज कोरियोग्राफ दिस एनर्जेटिक वीडियो फॉर हिम. एंड दिस इज एग्जैक्टली द थर्सडे मूड आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि एक्सपीरियंस चाहे कितना भी हो लाइफ में फर्स्ट टाइम खत्म नहीं होना चाहिए. हम अक्सर बोलते हैं ना कि नहीं यार अब हमारी उम्र नहीं रही और टाइम नहीं मिलता है, कब करूं, नया चीज़ सीखने का मौका भी नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, फैमिली है, बच्चे हैं, काम है, पढ़ाई है, इतना कुछ है करने को. बट अनिल कपूर की एनर्जी को देखो, आंखों में आपके मतलब गिल्ट शर्म से मरी जाओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट सीरियसली नया डांस, नई लैंग्वेज, सोलो ट्रैवल, कराओके, कुकिंग, एनीथिंग एनीथिंग दैट यू ट्राई न्यू, एनीथिंग एंड एवरीथिंग काउंट्स. आपने आज कौन सी नई चीज ट्राई की है, या इस साल को खत्म होने से पहले कौन सी एक नई चीज आप ट्राई करना चाहते हो? दिल खोल के आंसर करो. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. सेफ आंसर्स भी अलाउड है, लेकिन अगर चेकलिस्ट में या बकेट लिस्ट में स्काई डाइविंग है तो वो बताना मत भूलना. वैसे बातें जब अनिल कपूर की हो रही है, हाउ कैन वी नॉट प्ले दिस सॉन्ग? वी सो मिस हिम एंड दिस पेयर टुगेदर.

You're listening to 104.9 FM Fanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. और बहुत ही एक धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है अगले आधे घंटे में, बिकॉज एट 12:15 वी आर गोइंग टू हैव कुमार शानू द लेजेंडरी 90s सेंसेशन विद अस ऑन फनीशा रेडियो. येस, आई एम गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम ऑन एयर. और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ रहेंगी उनकी बेटी शैनन के, और दोनों परफॉर्म करने वाले हैं ऑन द 11th of September, विच इज टुमारो. यस, कुमार शानू वुड बी लाइव हियर ऑन द 11th of September टुमारो एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बिकॉज ही विल बी हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर फेवरेट रेडियो स्टेशन फनीशा रेडियो.

पहला नहीं, दिस इज देयर 41st स्टोर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट PMJ ज्वेल्स विच इज ओपन राइट हियर इन फ्रिस्को ऑन द मेन स्ट्रीट विच इज ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. जाइए वहां पे, उनके स्टनिंग कलेक्शन को देखिए, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, ब्राइडल कलेक्शन हो या फिर एवरीडे ज्वेलरी. आई नो यू माइट बी सरप्राइज टू सी देयर एवरी डे ज्वेलरी कलेक्शन. ऑफिस से अगर कोई पार्टी का इन्विटेशन हो, यू जस्ट हैव टू बी गेट रेडी इन अ वेरी जिफी आई मस्ट से. तो जाइए उनके कलेक्शन देखिए, क्या पता आपको तभी ऑन द स्पॉट कुछ पसंद आए. एंड फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइल स्टोन द ट्रस्टेड PMJ ज्वेल्स इज हियर फॉर यू ऑन द मेन स्ट्रीट, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घटमनेनी. PMJ इज अ नेम trusted by generations. Visit PMJ Jewelers again and discover jewelry that tells you a story.

minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fanisha Radio. This is Gupshup Gully with me, Rumita. And September 10th, it's a Thursday afternoon. और आपसे पूछना था कि घर पे अगर कोई भी special occasion है, चाहे वो शादी हो, graduation हो, house warming हो, तो क्या आप पूरी planning, plotting, strategy सब खुद करते हो? अगर अब तक करते हो तो आप करना छोड़ दो, because Vanessa Events is here for you. Yes, if you have a स्पेशल ओकेजन, एज आई सेड, तो वेन्यू से लेके डेकोर से लेके केटरिंग तक, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग, हर मामले में दे हैव सिंपल सॉल्यूशन फॉर यू. और सिर्फ सिंपल ही नहीं, दे हैव प्रोमिनेंट, फेमस एंड यू नो रिनाउंड सर्विसेज फॉर यू. जैसे कि डेकोर हो तो सिग्नेचर इवेंट्स, और खाना हो लाइक केटरिंग सर्विसेज हो तो फ्रॉम द बसेरा ग्रैंड रेस्टोरेंट. येस, फॉर एवरीथिंग लाइक दिस, फॉर एवरीथिंग टॉप नॉच एंड स्ट्रेस फ्री, हैसल फ्री, कॉल कीजिए हरि बसेरा को एट 4694428770. दैट्स 4694428770, बिकॉज वेनेसा इवेंट्स इज योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो अगर कोई भी ओकेशन हो तो आप सिर्फ उनके मेमोरीज को एंजॉय कीजिए, सारा स्ट्रेस ये संभाल लेंगे. बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज इन 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी सिंगर कुमार शानू एंड हर डॉटर शैनन के विल बी हियर विद अस ऑन विद लाइव ऑन फनीशा रेडियो विद मी. So, उनसे मिलके तो अच्छा लगना ही है.

0: एग्जैक्टली माई थॉट. यही गाना गा रही थी मन ही मन में जब आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी कुमार शानो एंड हर डॉटर शैनन के हु विल बी परफॉर्मिंग ऑल टुगेदर विद द मोस्ट बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स एंड दे आर ऑल कमिंग लाइव टू प्लेनो एट द रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स सेंटर ऑन द सितंबर 11th यानी कि कल. 90s नॉस्टैल्जिया पूरी तरीके से भरी पड़ी है उनके गानों में और इस कन्वर्सेशन में भी विच वी हैव द प्रिविलेज ऑफ इंटरैक्टिंग. लेट्स सी क्या कहना था उनको अबाउट हिज सॉन्ग्स अबाउट हिज लाइव कॉन्सर्ट दैट वी आर ऑल लुकिंग आउट फॉर एंड ऑफ कोर्स अबाउट हर बिलवड डॉटर शैनन के हु इज आल्सो मेकिंग अ मार्क इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. लेट्स हियर आउट व्हाट कुमार शानू एंड शैनन के हैड have had the conversation with Phoenicia. 90s sensation legendary Kumar Shanu is here with us on Fun Asia Radio. Aur sirf Kumar Shanu hi nahi, unke saath hai multi-talented global sensation singer Shannon K and of course Kumar Shanu's daughter. Aur wo dono aane wale hai on the 11th of September at the Robinson Fine Arts Center in Plano. A very warm welcome to Shanuda and पहला क्वेश्चन ये है हाइपोथेटिकली 26,000 गाने और उसके साथ अगर हाइपोथेटिकली कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि आपके सारे गाने डिलीट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा ना हो, तो आपके पास अगर मौका है कोई एक गाना सेव करने का वो कौन सा होगा और क्यों?
1: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस गाने को मैं प्रिजर्व करना चाहूंगा क्योंकि ये हर एक के लिए ये गाना है
0: जी. यू नो जेन ज़ीज आजकल रील्स पे हो क्लब्स में हो वापस से ऑल योर 90s मेलोडीज आर ट्रेंडिंग अगेन. डू यू थिंक और डू यू कंसिडर द 90s म्यूजिक एज अ नॉस्टैल्जिया और इट इज कंटेम्पररी अगेन एंड ऑफ कोर्स इट इज अनफॉरगेटेबल 90s.
1: 90s एरा का जो म्यूजिक था वो गोल्डन एरा था, बोलते हैं गोल्डन एरा. गुड लिरिक्स, गुड कंपोजिशंस, सारा एक साथ हुआ करता था. वो जो यंग जनरेशन, जो आज के जनरेशन जो है, वो जो मेरा गाना लेके बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि उनके मन में ना उनके उनके जिस तरह से गाने उनको चाहिए था वो गाना उसको मिल नहीं रहा, तो जिसकी वजह से वो डिपेंड कर रहा है, वो 90s की जो गाने हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. एक होता है ना कि म्यूजिक पे बह जाते हैं और एक होता है कि म्यूजिक को सुकून, म्यूजिक में सुकून मिलता है
0: जी.
1: तो ये दो चीज में फर्क होता है, तो उनको अभी सुकून चाहिए. जेन जी को गाने में सुकून चाहिए.
0: Shana, I'm going to ask you with this context, in this context actually, कि what does your generation hear in your dad's music, जो कि आपकी generation के music में missing है, आपका क्या point of view है इसमें?
2: I think I'll just piggyback on what dad said right now. It's a overall contribution to not just like the vocals, but the composition, the melody, you know, the lyrics. If you look at it, there's literally a song for everything, you know, right from falling in love to being in love to break up to, you know, whatever it may be, like cheating or whatever. So I think just, you know, when words fail, music speak, I would say. So that's what it is.
0: जब आप किसी भी NRI audience के लिए perform करते हो, जो आप करने वाले हो on the 11th of September, तब आपको आपके दिमाग में क्या चलता है? लाइक आर यू परफॉर्मिंग फॉर एन ऑडियंस जो आपके गाने एंजॉय कर रहे हैं और यू आर जस्ट गिविंग अ पीस ऑफ देयर नॉस्टैल्जिया बैक टू देम?
1: आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात बोला आपने कि उनको उनके जो गोल्डन पीरियड जो उनका लाइफ का था, उस पीरियड को थोड़ी देर के लिए मैं उस पीरियड को मैं वापिस उनके पास देता हूँ. तो ये चीज को उसको एहसास कराना दोबारा कि भाई हमने क्या किया था उस समय, तो हमने वो चीज को स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो हम बोलते भी हैं उसे ये सब बातें एंड उसको उसी चीज का याद दिलाते रहते हैं कि भाई देखो आपने क्या क्या उस समय करते थे, क्या क्या. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है.
0: थैंक यू सो मच अनुदा. शैनन, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट कुमार शानू सॉन्ग एंड प्लीज टेल अस एंड सिंग टू लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग फॉर द फनीशिया दिस.
2: And it's none other than Jab Koi Baat Bigad Jaye.
0: Can you please both of you sing it together for us?
2: Yeah, you want to hear it?
1: Jab Koi Baat Bigad Jaye, Jab

0: और वहां पे स्टेज पे भी बहुत सारे सरप्राइज आइटम होगा जिसमें उनको बहुत ही मजा आएगा। ये दे शुड नॉट मिस दिस शो बिकॉज इसमें बहुत सारे रंग हम वहां पे लाने वाले हैं। तो एक चीज मैं पहले से नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, तो वो वहां पे आए एंड देखे कि हम क्या करने वाले हैं।
1: Thank you so much, Shanuda. Thank you so much for talking to us
0: थैंक
1: and taking time. Thank
0: यू
1: you,
0: थैंक
1: Shannon. And we look
0: यू
1: forward to this.
0: थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
2: Thank you so much.

What a beautiful track, and that brings the end to my show today. This is Rumita signing off from today's Gapshap Gali. Kal phir milungi, subah 10 baje rahungi aapke saath 12:30 baje tak. Till then, enjoy each and every moment you have in your life because it's very important to be happy and be content with whatever you have. Kyunki जैसे हमारे दिग्गज बनी साहब कहते हैं, आई मीन सॉरी, नैना कहती है बनी को कि कितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. सो ऑन दैट नोट, ऑन दैट थॉट, आपसे होगी कल फिर दिल से सारे गल्ला, ओनली ऑन 104.9 FM फनी शो रेडियो.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
2: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं ही तो।
6: अजी सुनते हो?
7: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशन, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
12: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Sanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: tracks that put you on the right track.
1: Hello, namaste and good afternoon. This is your host Ayushi aur hum pahunch gaye hain fir se studio mein. आपका स्वागत करने के लिए कुछ प्यारे खूबसूरत गानों से. एंड इसके पहले रिमिता यहाँ पर थी एंड एज ऑलवेज शी डिड्स अ ब्यूटीफुल शो एंड थैंक यू रिमिता हमारा दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए. और अब बारी है दोपहर की, तो दोपहर में आपके होस्ट आयुषी आपको कुछ प्यारे खूबसूरत गाने सुनाएगी और आपकी फरमाइशें भी लेगी. स्टूडियो का नंबर आते ही याद दिला रही हूँ, 972-235-5555 है. कॉल करिए, अपने पसंद के बॉलीवुड गाने प्ले करवाइए अपनी होस्ट आयुषी के साथ.

अरिजीत सिंह एंड निकिता गांधी का ये गाना केदारनाथ फिल्म से था और फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया है और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, जल्दी से ना पहले गाना प्ले करूँगी क्योंकि ये गाना है एक पति की तरफ से एक पत्नी को, कोई रोमांटिक गाना नहीं है ये गाना, है मतलब थोड़ा अच्छा फील करा रहा है ये गाना, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है बिकॉज उनकी नई जॉब लगी है, एक फुल टाइम जॉब लगी है जिसके लिए शायद वो बहुत इनसे मेहनत कर रही होंगी, और एक पति इस बार एक लव सॉन्ग डेडिकेट करके उनको बस नहीं बोलना चाहते हैं, उनको उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं इस गाने से कि येस यू हैव डन इट एंड यू विल डू इट वंडरफुली, यू विल एक्सेल इन दिस जॉब टू, जैसे तुम हर चीज़ में करते आए हो. सो दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू हेतल, आपके पति देव की तरफ से, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब.

0: led by CPA Sudhir Pai. My Time Equity offers personalized strategies for portfolio management, real estate, alternative investments, and retirement planning. Visit mytimeequity.com or you can call them on 469-702-1272. I repeat, that's 469-702-1272. So, अभी ये फरमाइश आई थी एक अपनी वाइफ के लिए, किसी ने डेडिकेशन करी थी हेतल के लिए, शी हैज गॉट अ न्यू जॉब, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू. एंड समटाइम्स दिस सपोर्ट सिस्टम इज राइट देयर इन द हाउस और हम लोग ना लड़ते रहते हैं बस उससे. तो लड़िए कम और पति देव लोग, जैसे इन्होंने अपनी पत्नी को इतना प्यार दिखाया ना, आप भी प्लीज़ ऐसे ही अपनी पत्नी को प्यार दिखाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए यार, बिकॉज आज भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. कहते हैं इक्वालिटी और ये वो, बट नहीं, ऐसा नहीं है. इक्वालिटी तो है, बट मुझे लगता है कि हम लड़कियां ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो गई हैं और हमें किसी ने किया नहीं है, हम खुद से अपने आप को इतना प्रेशराइज कर देते हैं. ऐसे लगता है हर कुछ हमारा ही टास्क है, सब कुछ हमें ही करना है. एंड वी हैव आर सपोर्ट सिस्टम्स, वी हैव आर हस्बैंड्स, वी हैव आर सन्स, वी हैव आर ब्रदर्स, दे आर ऑल देयर. बस बोलने की ज़रूरत है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है. घर के भी काम में ना खुल के हेल्प मांगो, ठीक है? ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है. दे विल हेल्प यू. एंड प्लेइंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय शाम्भवी फॉर शी वॉन्टेड टू लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.
1: तुम गाते जाओ, हम सोचते जाएंगे.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए लेकर के आए थे, आपकी ही फरमाइश पे, और फरमाइशों का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आके और ढेरों चर्चा करेंगे, बातें करेंगे आपकी होस्ट आयुषी के साथ। तो भाई बने रहिए, स्टेशन चेंज मत करिएगा, क्योंकि हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। सुनते रहिए फनेशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर, उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
14: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: नेशन का फन स्टेशन फन एशिया रेडियो।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे शो में और आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को और हम यहाँ पर आपकी फरमाइशें ले रहे हैं फिलहाल इस सेगमेंट में। तो अगली फरमाइश आके रखी है मेरे पास, लेकिन हम ब्रेक पे जाने के पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से पतियों को घर पे पत्नियों को हेल्प करना चाहिए। टॉपिक ये नहीं था कि घर पे हेल्प करना चाहिए, ओवरऑल हेल्प करना चाहिए। कुछ लोगों ने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया होगा, इसलिए मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि हम बात कर रहे थे कि यू नो हाउ कैन यू मोटिवेट योर वाइफ, मेक हर फील मोर इम्पॉर्टेंट, मेक हर फील मोर रिलैक्स्ड। बेसिकली घर का सारा काम यहाँ पे सब कोई मिलके कर रहा है, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं चल रहा है मोस्टली घरों में कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बिकॉज हम ही हैं जो एक दूसरे का साथ देंगे। बट बात यहाँ पर यह है कि हम लड़कियों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो त्यौहार की तैयारियां करना हो या घर पे काम करना हो। हमसे मुंह से एक बार निकल ही जाता है कि यार हम कर लेंगे, लेट इट बी, आई विल डू इट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। दिस इज़ व्हाट अ कंडीशनिंग इज़, राइट? ऐसी कंडीशनिंग है हमारी। एंड इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी मिला था, मतलब मैंने एक बार रील भी बना दी थी इसके ऊपर, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें सुनाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लाने की कोशिश करते हैं, वेर इन यू नो कुछ भी घर में काम होता है तो मेरे मुंह से जब मेरे पति थे वो कर रहे होते, मैं करते हुए देख भी लूँ, बिना बोले जा रहे हैं चुपचाप करने, एंड आई टेल हिम दैट लाइक आई डू इट, तुम क्यों कर रहे हो, जाओ तुम जाकर के वॉक करके आओ या अपना काम खत्म करो या जो भी। सो दिस इज़ आवर टेंडेंसी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें ऐसे बैलेंस करना है कि अपने वाइफ को सपोर्ट इस तरह से करें कि उनको ये ना लगे कि ये सारा टास्क सिर्फ उनका है। एंड यही थॉट है, इसी पे चर्चा चल रही है। सो इफ़ यू हैव एनी थॉट्स ऑन इट, इफ़ यू फील दैट यू नो एज अ वुमन यू फील दैट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो जरूर शेयर करिए मेरे साथ। और अगर आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं तो उनको करने दीजिए, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज अगले गाने की तरफ चलते हैं। अगले गाने की फरमाइश ऑलरेडी आ चुकी है, मेरा भी ये रिसेंट फेवरेट ट्रैक्स में से एक है।
21: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी,

तो भाई डैलस वालों, क्या आप तैयार हैं फॉर अ फन फिल्ड नाइट विथ टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90s नॉस्टैल्जिया? यार ये 90s नॉस्टैल्जिया कभी खत्म नहीं होता है, मेरे लिए तो नहीं होता है. सो द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो. और अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है, मुझे लगता है आप लोगों को ले लेना चाहिए. सेप्टेम्बर 11th को इनका शो है. किसका शो है? कुमार सानू साहब का शो है भाई, लाइव इन कॉन्सर्ट. अनफॉरगेटेबल 90s लेकर के आ रहे हैं ऑन सेप्टेम्बर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सिंग अलॉन्ग टू द सॉन्ग्स दैट यू ग्रू अप विथ एंड मैजिक तो हमें पता ही है कि होगा. तो भाई जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं और फ्री पार्किंग है और एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शन भी है. बुक योर टिकट्स टुडे एट eventbrite.com एंड sulekhatickets.com. और आप कॉल भी कर सकते हैं 214-869-2668. ठीक है, जल्दी से कॉल करिए. एंड दिस शो इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. और मैं सोच रही हूँ ना, क्यों ना कुमार सानू फैंस को एक टिकट दे दिया जाए आज. ले लो भाई, आप ये गिव अवे ले जाओ, कुमार सानू का टिकट. लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी फिल्म का गाना है. 90s का नंबर प्ले करने वाली हूँ. स्टूडियो का नंबर आपको पता ही है, 972-235-5555 है. और ये गाना सुनो और जल्दी से कॉल करके मुझे फिल्म का नाम बताओ और ले जाओ गिव अवे कुमार सानू के शो का टिकट.

यार ये 90s का म्यूजिक और कमार सानू की आवाज, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दिल के किसी कोने के अलग-अलग तार को हिला देता है बिल्कुल जोरों से। बट हमें अपना जवाब मिल गया है, एंड इस मूवी का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, और इनाम मिला है हमारे प्यारे मित्र नवाज झा जी को। तो आपके लिए जोरदार तालियां। और बाकियों से माफी चाहूंगी भाई कि आपको नहीं मिला गिव अवे। हमारे पास इतनी कॉल्स आ रहे होते हैं कि लगातार फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन नहीं उठा पाती हूँ। इट्स जस्ट लक और कुछ नहीं है। तो जिसको टिकट मिला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो जाएं और इस शो को इंजॉय करें। कुमार सानू इज कमिंग ऑन 11 सितंबर, विच इज़ टुमारो, एंड अनफॉरगेटेबल 90s का सफ़र होने वाला है, रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। यदि 90s के गाने थोड़े से अलग होते हैं, जब मैं 90s के सुनती हूँ ना तो वहीं अटक जाती हूँ, इसलिए एक गाना ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हो, टू ऑल द 90s फैंस। अनदर कुमार सानू नंबर।

ये दिल लगी का ये गाना, और इस गाने में है काजोल और सैफ अली खान, आवाज है कुमार सानू साहब की। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना था ये। 90s का नंबर जब आता है तो हम लोग इसी पे अटक जाते हैं। हम तो अटक जाते हैं भाई, कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर फिलहाल आप अटके हुए हैं कहीं पर और सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या खाना खाएं, लंच का टाइम हो रहा है, और अगर आप गार्लैंड की तरफ हैं तो तंदूरी फ्लेम जरूर जाएं, बिकॉज तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन गार्लैंड एंड इट्स द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सिजलिंग तंदूरी प्लेटर भी मिलेगा, रिच करीज भी मिलेंगी, एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जो भी है वो सब यहाँ मिलेंगे। लेकिन उसमें एक होम स्टाइल पंच जरूर होगा, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान, एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन। स्टेप इन टुडे, लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड, अगर आप उस तरफ हैं तो जरूर जाइए और यहाँ का खाना खाइए। चलिए एक और 90s की तरफ लेकर के जा रहे हैं आपको। 90s का नंबर बताए ना, जब आता है तो बस उसी पे अटक जाते हैं हम।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली।

0: तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
11: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
12: डील कहाँ?
11: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
13: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
14: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
15: More music, more magic, more musty, 104.9 FM, Fun Asia में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को, और अपने शो के इस सेगमेंट में हम कुछ 90s के गाने ही चला रहे हैं, क्योंकि 90s के गानों की ही फरमाइश आ रही है। मैंने कहा ना, एक बार ये सफ़र शुरू हो जाता है तो ख़त्म नहीं होता है। एनीवेज, आप अगर कोई गाना फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए। कोई डेडिकेशन है, किसी का बर्थडे है, किसी को ऐसे ही अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी की एनिवर्सरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं 972-235-5555। और सितंबर तो भाई बर्थडेज का महीना है। मेरे घर में तो बहुत बर्थडेज होते हैं सितंबर को, सितंबर में तो मेरे परिवार में हर दिन बर्थडे विशेज आ रही हैं। तो अगर किसी के बर्थडे है, किसी को याद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाना रिक्वेस्ट करिए, हम हैं आपकी फरमाइश लेने के लिए।

अच्छा लगता। If you are on H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa और अगर आप चाहते हैं कि आप US में permanent residency के रास्ते पे जाएं, तो आपको कॉल करना है लॉ offices ऑफ सीमा मेहता। जी हाँ, आप यू कैन कॉन्टैक्ट देम अटॉर्नी सीमा मेहता एंड एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, you can email them info@seemamehtalawfirm.com. I repeat, that's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta.

Okay, Dallas, so are you ready for an unforgettable night of music? The one and only Sonu Nigam live in concert. Experience Revolution Saturday, September 26th at 8:30 p.m. तो भाई तैयार हो जाइए शो के लिए, जो कि है क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन में, सितंबर 26th एट 8:30 p.m. योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस एंड ऑल लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. आई रिपीट, दैट्स 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. An exclusive media partner is Fanesha Network. अगला गाना तो सोनू निगम का ही बनता है.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
3: लैपटॉप में.
2: इन्वेस्टमेंट?
3: गूगल ड्राइव.
2: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
3: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
2: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
4: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
4: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभाल लेंगे.
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
14: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
15: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
16: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
17: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
18: 9 FM, Fun Asia Radio. Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
19: Non-stop entertainment और non-stop Bollywood गानों का सफर चल रहा है Fun Asia 104.9 FM पे, आपके होस्ट आयुषी के साथ. और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. शो का आधा घंटा बचा हुआ है, लेकिन आपके दिए हुए गानों को मैंने लाइन अप कर लिया है और एक एक करके सारे गाने प्ले करेंगे. अगर आप और कोई फरमाइश देना चाहते हैं तो कॉल करिए, हम कोशिश करेंगे प्ले करने का. अभी आधे घंटे हैं मेरे पास. उम्मीद करती हूँ आप सबकी पसंद के गाने आप तक लेके आ पाऊंगी। और वैसे त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, राइट, चारों तरफ वही तैयारियां चल रही हैं। अगर किसी भी स्टोर में जाओ तो गणेश जी की मूर्तियां दिख रही हैं। उसके पहले हमारे यहाँ एक और पूजा होती है जिसको हरतालिका तीज कहते हैं, वो भी 14 सितंबर को है। कन्फ्यूजन है डेट का, 13 या 14, तो 14 सितंबर को वो है। उसके बाद गणेश चतुर्थी भी 14 सितंबर को शुरू हो रही है और 10 दिन का लंबा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो त्योहारों का ये मौसम आते ही एक अजीब सी मस्ती छा जाती है चारों तरफ। खाने पीने की चीज़ें सोचने लगता है इंसान, अच्छा अच्छा क्या क्या खाना बनेगा, कितनी सारी मिठाइयाँ, मोदक, मतलब बेसिकली दिस इज़ द सीज़न टू गेन वेट। आपका सारा डाइट और कैलोरी डेफिशिट एक तरफ चला जाता है एंड बस आप खाना पीना एंजॉय करने के लिए अगले 2 महीने तक तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी इसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद दुर्गा पूजा आ जाएगी, फिर उसके बाद वो 10 दिन का सेलिब्रेशन होगा, देन वी हैव दिवाली एंड छठ पूजा एंड सो मच मोर गोइंग ऑन। सो गेट रेडी फॉर द फेस्टिविटीज, त्योहारों की शॉपिंग शुरू कर दीजिए और हमारे साथ फनीशा पे गाने सुनते रहिए, क्योंकि जहां भी जाइएगा हमें पाइएगा, हर गाड़ी में 104.9 FM होना चाहिए।

सोनू निगम की आवाज़। और हम बात कर रहे थे त्योहारों की, और क्योंकि त्योहार आने वाला है तो आप थोड़ा समय निकाल के हमारे साथ भी त्योहार मनाइए। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स एंड अमार ख्वाजा प्रेजेंट्स मेक योर गणेश विथ फाइनेंशियल नेटवर्क। दिस गणेश चतुर्थी चिल्ड्रन एजेस 5 to 12 कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेश एट अ फनफुल वर्कशॉप ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 12th, जो कि परसों है। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं ganesha.funasia.net एंड लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएटिविटी शाइन। स्पॉट्स लिमिटेड हैं, तो प्लीज़ जल्दी जाइए, रजिस्टर करिए और अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की क्रिएटिविटी को मौका दीजिए और उभरने का इस गणेश चतुर्थी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। अगले गाने की फरमाइश पूनम जी की तरफ से आई थी, तो जल्दी से वो गाना प्ले कर देते हैं।

तो ये था मिलन फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना, जमानों बाद सुना है। थैंक यू पूनम जी फॉर ब्रिंगिंग दिस मेमोरी बैक। ये भी गाना हमने सुना है और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना था। थैंक यू सो मच। फिलहाल आप लोगों को बता देते हैं, अगर भूख लगी है ना तो कहाँ जाना है, पिज्ज़ा खाने का मन है तो फन पिज्ज़ा किचन ने लॉन्च किया है ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ा लाइनअप। और ये सिर्फ पिज्ज़ा नहीं है भाई, फ्लेवर फिएस्टा है फुल ऑन। मैंने तो ट्राई कर लिया है, अब आपकी बारी है। फ्रॉम फ्रेश फिएस्टा वेजी टू द फायरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सिनोर कैमरॉन, एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस। हेड ओवर टू फन पिज्ज़ा किचन एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ। न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन, एंड फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com। और चलिए अब हम आपको ना गिफ्ट कार्ड दे देते हैं ताकि आप खुद से जा करके यहाँ से पिज्ज़ा ले करके आएँ। $10 का गिफ्ट कार्ड है जो आपको फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से मिलेगा। और एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है, हमेशा की तरह प्यारा सा गाना प्ले करूँगी और जो हमारे पहले कॉलर होंगे उसको मिल जाएगा ये $10 का गिफ्ट कार्ड। ठीक है, तो गाना प्ले कर रही हूँ, फिल्म का नाम बताना है आपको, जल्दी से कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर जो कि है 972-235-5555।

सो हियर वाज दिस लवली नंबर फ्रॉम द मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और जवाब दिया इसका, सही जवाब दिया सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ श्रीवास्तव। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो सिद्धार्थ आपको जाना है फन पिज्जा किचन फ्रिस्को वाले लोकेशन पे और गिफ्ट कार्ड कलेक्ट करना है। $10 गिफ्ट कार्ड वेट्स फॉर यू। तो ये ऐसा ना मजे कुछ होते रहता है हमारे शो पे मजेदार मजेदार। आप लोग लेट हो जाते हैं कॉल करने में, तो डिसअपॉइंट मत होइए। हर दिन हर सेगमेंट में गिव अवेज चलते रहते हैं, और गाने हैं ना यार, इनके बारे में हम क्या ही बात करें, तो हम बजाते ही रहते हैं आपके लिए। तो शो को अब आगे बढ़ाने के बजाय शो को खत्म करने का टाइम आ रहा है, बट स्टिल आई थिंक वी हैव टाइम। सो आई प्ले अ ब्यूटिफुल नंबर जिसकी फरमाइश बहुत देर से आई थी एंड आई कुड नॉट प्ले। सो हियर इज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक रिक्वेस्टेड बाय प्रीति।

व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आमिर खान, ममता कुलकर्णी, और फिल्म का नाम है बाजी। वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन उसके पहले एक जरूरी जानकारी दे दूँ टेक्सास बिजनेस ओनर्स को, दैट इफ यू लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटेटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट तारा एनर्जी डॉट कॉम टूडे। और इस जानकारी के साथ आज के लिए विदा लेती हूँ, बिकॉज वक्त हो गया जाने का, और मेरे बाद सुनहरी किरण आएंगी यहाँ पे एक सुनहरा सा शो लेकर के। बहुत ही प्यारा सेगमेंट होता है सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया। आज के लिए विदा दीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे प्ले किए हुए गाने पसंद आए होंगे। हम फिर कल मिलेंगे दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। Your host Ayushi is signing off for the day. Thank you so much.

0: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: वी नीड टू टॉक।
6: अब क्या हुआ?
5: नथिंग, इट्स नॉट यू।
6: ओह नो,
5: इट्स द डिस्टेंस।
6: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी

0: Flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
1: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney. Sadia.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Furniture Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और जी, हर रोज मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ. एवरी डे आई ब्रिंग यू अ न्यू फ्लेवर. आज का फ्लेवर ऑफकोर्स फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जी, फूड जंक्शन, जहां हम जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में, और बात करते हैं कि यहाँ के लोकल फेवरेट्स क्या हैं, यहाँ के देसी फेवरेट्स क्या हैं, यहाँ के डिजर्ट फेवरेट्स क्या हैं, क्या हमें खाना है जब हम टूरिस्ट बन के जाते हैं इन शहरों और मुल्कों में. और जो रेस्ट ऑफ द थर्सडेज होते हैं हमारे मंथ के, उसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए वो 90s का बॉलीवुड. लास्ट वीक हमने बात करी थी इस्तांबुल की. देयर इज स्टिल एपिसोड 2 ऑफ इस्तांबुल दैट विल बी कमिंग ऑन 1st of October. तो अब जो है वो 90s के बॉलीवुड की तरफ हम अपनी जर्नी लेके जा रहे हैं वापस. और कल हमने बात की थी कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल गाने लेकर आऊंगी 90s में, जो नदीम श्रवण ने गाने बनाए, क्योंकि 90s के दौर में वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड म्यूजिक कंपोजर्स की जोड़ी, जैसे आजकल विशाल ददलानी हैं और शेखर हैं, इसी तरह तब थी जी नदीम श्रवण. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल ट्रिब्यूट टू नदीम श्रवण राइट हेयर ऑन योर वो 90s का बॉलीवुड विद योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: बस तुम रहते हो।
1: सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड। आज हमने स्पॉटलाइट डाली है जी। स्पॉटलाइट तो वैसे ये नहीं चल रहा, लेकिन वो 90s के बॉलीवुड में आज हम बात कर रहे हैं नदीम श्रवण की। नदीम श्रवण के कुछ म्यूजिक कंपोज या कंपोज किए हुए गाने आपके लिए प्ले करूंगी बैक टू बैक, क्योंकि कुछ ऐसे खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए। और जब आप देखिए रिसर्च करना शुरू करते हैं ना, और मैं आपके लिए ये शो तैयार करना शुरू करती हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि कितना कुछ है जो रिसर्च करने से या पढ़ने से पता लगता है, वरना वैसे हम बहुत सारी चीजों को कई बार फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। सो देयर इज सो मच ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ 90s दैट वाज क्रिएटेड बाय दिस लेजेंडरी डुओ जो मैं आपके लिए आज प्ले करूंगी। आप भी अपने कोई पसंद का गाना मुझे बताना चाहते हैं तो जरूर कॉल करके बताइए। रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज वेलकम, एंड इफ आई कैन ट्राई एंड फिट इट इन आई विल डेफिनेटली डू दैट। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और अगला गाना प्ले करते हुए आपको बताएं जी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स और उमर ख्वाजा आपके लिए लेकर आए हैं मेक योर ओन गणेशा विथ फाइनेंशियल नेटवर्क। ये इस गणेश चतुर्थी, इफ यू हैव अ चाइल्ड एज बिटवीन 5 and 12 ईयर्स, देन दे कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट अ फन फिल्ड वर्कशॉप जो हो रही है सैटरडे सितंबर 12 को। स्पॉट्स लिमिटेड हैं जी, तो प्लीज इस वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और अपने बच्चे को आज ही रजिस्टर कीजिए। गिव देम अ चांस टू शाइन विद देयर क्रिएटिविटी। दैट वेबसाइट इज ganesha.funasia.net। वंस अगेन द वेबसाइट इज ganesha.funasia.net. These are some classic melodies of Nadeem Shravan.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में अपने आप को जो सारी स्ट्रेस है इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करने का, अगर आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, लीगैलिटीज, द पेपर वर्क, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो आपको साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है. तो आप सिर्फ अपनी वेलबींग का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा हैंडल द रेस्ट फॉर यू. द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा, दे आर हेयर टू हेल्प यू. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं टू स्केड्यूल अ कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 469-300-5046. अटर्नी ओमर, OMAR, attorneyomar.com इज वेयर यू कैन लॉग ऑन एंड चेक आउट मोर अबाउट देम. बेहतरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सारी डिस्कशन की वो ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस अपने केस को जीत नहीं चाहते. सो इट इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अगर आप या कोई somebody यू नो इज गोइंग थ्रू दिस, देन दिस इज, वो कहते हैं ना, राहत की खबर आपको दे रही हूँ. अटर्नी ओमर ख्वाजा से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए. अच्छा जी, आज की दोपहर हम थोड़ा सा स्पेशल बना दिया है. हमने वो 90s के बॉलीवुड को, और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक कंपोजर्स की जिन्होंने सिर्फ गाने कंपोज नहीं किए बल्कि इन्होंने 90s की, ये बन गए थे 90s के रोमांस की आवाज, वो कहते हैं ना धुनों में, म्यूजिक में आवाज, वो मोहब्बत जो कैसेट प्लेयर्स में बजती थी और जो कॉलेज के कॉरिडोर्स में सुनाई देती थी. मतलब जाहिर सी बात है, गाने तो हम जब हम यंग होते थे तो हम ही से वो चलते थे और हम ही उनको प्ले भी करते थे और कैसेट्स भी रिकॉर्ड करवाते थे. ये वो मोहब्बत थी सच में जो हैंड रिटन लेटर्स में पेन डाउन की जाती थी. और वो दर्द, चाहे वो रोमांटिक गाने हों, चाहे वो दर्द भरे गाने हों, ये सारे का सारा खासा था इस डुओ का. दिस इज नदीम श्रवण, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़ इनका नाम. 1990s में आशिकी फिल्म ने ना सिर्फ कुमार सानू को बनाया था बल्कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुई थी आशिकी मूवी नदीम श्रवण के लिए भी. सो आशिकी मूवी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों के करियर्स आशिकी मूवी ने ओवरनाइट एस्टैब्लिश कर दिए थे. कुछ लोग उसमें से फेड अवे हो गए लेकिन जो म्यूजिक से रिलेटेड करियर्स थे उन्होंने सिर्फ फ्लरिश किया. सो लेट्स कीप आवर जर्नी ऑन विद दिस आशिकी सॉन्ग.

जी हाँ, 1990 में रिलीज हुई आशिकी फिल्म, और आशिकी फिल्म के लिए ना सिर्फ कुमार सानू ने जीता अपना पहला बेस्ट म्यूजिक आवाज का अवार्ड, बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जीता इन्होंने, नदीम श्रवण ने, और वो भी उनके लिए भी ये पहला ही अवार्ड था. और वहां से फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर कभी खत्म नहीं हुआ, चलता ही गया. अच्छा, आशिकी के गाने, मतलब ये वो टाइम था जब 80s का दौर आपको याद है, कुछ मार धाड़ और जरा एंग्री यंग मैन वाले हीरो और ये सारा कुछ चल रहा था. और उसके बाद आशिकी के आने के बाद से क्या चेंज आया बॉलीवुड में? बॉलीवुड का म्यूजिक बदल गया, उसका साउंड बदल गया, मेलोडी वापस सेंटर स्टेज पर आ गई, सिंपल लिरिक्स, ब्यूटिफुल ऑर्केस्ट्रेशन, ढोलक हुआ, तबला हुआ, संतूर हुआ, फ्लूट, स्ट्रिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक मेलोडी जो सीधा दिल को टच करे, दैट वॉज द फोकस आफ्टर आशिकी की बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की. और ये सॉन्ग जो है वो एसोसिएट हुए बहुत ज्यादा नदीम श्रवण से, जो बहुत सारे गाने अब आपको मैं सुनाऊंगी और आप जानेंगे कि ये सारे कभी ना कहीं नदीम श्रवण साहब के ही दोनों की जो डुओ था इनकी कॉम्पोजिशन से लिखे. मैं आपको बताऊं जी, अच्छा चलिए हम पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा डिटेल के बारे में कि हु वर नदीम एंड श्रवण और कैसे बनी ये जोड़ी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
6: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
5: Fikar not. We have the perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi खबर उनका AI powered platform real time rates compare करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी problems solve कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
12: चीनी हुकम मेरी अकल. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
13: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
13: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
14: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio, Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में वो 90s का बॉलीवुड चल रहा है और आज हमने थोड़ी सी बात करी है नदीम श्रवण के बारे में. वो 90s की बॉलीवुड में बहुत सारा कुछ डिफरेंट मैं आपके लिए लेके आती हूँ. लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट वीक तो खैर हमने फूड जंक्शन किया था, उससे पहले टॉकिंग अबाउट द लीडिंग लेडीज ऑफ बॉलीवुड इन द 90s, उससे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट लीडिंग मेल कास्ट ऑफ 90s और आज हम लीडिंग में नदीम श्रवण की म्यूजिक कंपोजर्स में बात कर रहे हैं. कुछ बेहतरीन गाने नदीम श्रवण के कंपोज किए इन द 90s आपके लिए प्ले करूंगी. उससे पहले आपको बताती चलूं कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन लाए हैं. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता तो दे आर ऑफरिंग यू एन अफोर्डेबल प्राइमरी केयर मेंबरशिप व्हिच इज कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट. $85 अ मंथ आपके लिए ये मेंबरशिप है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा. दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, साथ साथ टेली हेल्थ वेन एवर रिक्वायर्ड, केयर कोऑर्डिनेशन और प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज. दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सम एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. सो आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप दैट फोन एंड गिव देम अ कॉल एंड आस्क ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू नीड टू नो बिफोर यू मेक दैट डिसीजन. दैट नंबर इज 214-666-6259. आप इस नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड दे विल गेट बैक टू यू. वंस अगेन द नंबर इज 214-666-6259 या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज पैशन हेल्थ फिजिशियंस.com.

जी हाँ, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़ ये मिले अर्ली 1970s में थ्रू अ कॉमन फ्रेंड. एक कॉलेज फेस्टिवल हो रहा था और वहाँ उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया. उसके बाद वो मुलाकात उनकी पहली थी, दोस्ती हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर कलेबरेशन बना. देयर फर्स्ट फिल्म असाइनमेंट वॉज अ भोजपुरी फिल्म जिसका नाम था दंगल और ये फिल्म आई थी जी 1977 में. अब आप इमेजिन कीजिए 1970s की ये जो म्यूजिकल पार्टनरशिप शुरू हुई और इस पार्टनरशिप को मेन स्ट्रीम सक्सेस जो है वो अराउंड आप देख लीजिए कोई 13 साल बाद मिला फिल्म आशिकी के साथ. सो नदीम सैफी जो थे वो अपनी म्यूजिक म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स और कॉम्पोजिशन के लिए जाने जाते थे. स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उनके पास मेलोडी एंड रोमांटिक म्यूजिक की, जबकि श्रवण राठौड़ जो हैं वो म्यूजिकल बैकग्राउंड लेकर अपने साथ आए थे. उनका एक्सपोजर टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन्फ्लुएंस द ड्यूओज म्यूजिक कैपेबिलिटी या सेंसिबिलिटी आप कह लीजिए. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दे डिडंट बिकम ओवरनाइट स्टार्स बिकॉज के जाहिर सी बात है वो नए थे, वो एस्टैब्लिश कर रहे थे अपने आप को. उन्होंने बहुत साल इंडस्ट्री को देखा भी, अंडरस्टैंड भी किया और अपने म्यूजिक को इन्हांस किया. एंड दैट इज हाउ स्पेंडिंग प्रॉबेबली अ डेकेड और मोर इन द इंडस्ट्री दे गॉट द स्टारडम विद द मूवी आशिकी. और फिर वो कहते हैं ना शायद सितारे अलाइन हो गए थे या पता नहीं क्या हुआ था, उनकी किस्मत बदल रही थी. 90s के बाद जो 90s की ये मूवी आई 1990 की, उसके बाद बैक टू बैक हर साल उन्होंने हमें बहुत सारे बेइंतहा खूबसूरत गाने दिए. उन्हीं खूबसूरत गानों का एक गुलदस्ता बनाकर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड एंजॉयिंग. ये जो अगला गाना आप सुनेंगे, दिव्या भारती उन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और दिव्या भारती की ऑलमोस्ट सारी ही फिल्मों में आप कह लीजिए नदीम श्रवण का म्यूजिक था, जो मतलब सारी से मतलब जो मेजर फिल्मों के गाने जो मैं आपके लिए प्ले करूंगी, बहुत सारे फिल्म गाने नदीम श्रवण ने दिव्या भारती के लिए कंपोज किए. दिस इज वन ऑफ देम.

और अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं और आप डेफिनेटली टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं तो स्मार्टर एनर्जी सॉल्यूशंस तो हम सभी को चाहिए होते हैं. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर एनर्जी सॉल्यूशन, कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन स्पेशली, देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स आपको देंगे, रिलायबल सर्विस है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कस्टमाइज करते हैं एनर्जी प्लान्स डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स. कोई भी सवाल है आपके जहन में, देयर इज नो हार्म, पिक अप दैट फोन, गिव तारा कमर्शियल एनर्जी अ कॉल एंड आस्क एंड डिस्कस ऑल योर कंसर्न्स विद देम. 844-428-2808 is the number, ya phir taraenergy.com, that is TARA taraenergy.com. अच्छा जी, आशिकी फिल्म के लिए, साजन फिल्म के लिए, दीवाना फिल्म के लिए, राजा हिंदुस्तानी, परदेस और राज जो कि 2003 में आई थी, इन छह फिल्मों के लिए नदीम श्रवण ने पाया फिल्म फेयर अवार्ड. 1991 से जो सिलसिला शुरू हुआ तो लास्ट अवार्ड जो उन्होंने फिल्म फेयर का लिया वो था 2003 में. इसके अलावा बे इंतहा नॉमिनेशंस उन्हें मिली. नॉमिनेशंस तो ऑलमोस्ट हर साल ही उनकी किसी ना किसी मूवी को मिल रही होती थी. सो दीवाना की बात हो, एक्चुअली दीवाना की बात हो रही है तो इस गाने से हम आगे बढ़ाएंगे अपने सिलसिले को. दिस इज येट अनदर आउटस्टैंडिंग नंबर कंपोज्ड बाय नदीम श्रवण. दिस इज सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं.

0: NCR straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
1: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
2: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
0: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
8: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
9: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
10: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

104.9 FM Fun Asia Radio पे आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आप सुन रहे हैं जी वो 90s का बॉलीवुड एवरी थर्सडे अदर थर्सडे फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ मैं आपके लिए लेके आती हूँ फूड जंक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द थर्सडेज ऑफ द मंथ हम करते हैं वो 90s का बॉलीवुड आप ही की रिक्वेस्ट पे ये सेगमेंट डाला है और आज हमने नदीम श्रवण जो कि 90s के वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल म्यूजिक कंपोजर्स बन गए थे जैसे कि कुमार सानू से सब लोग गाना गवाना चाहते थे उस दौर में वैसे ही नदीम श्रवण साहब से की जोड़ी से बनवाना चाहते थे म्यूजिक. अच्छा अब जो मैं अगला गाना आपके लिए प्ले करूँ उसको अटैच कर रही हूं एक गिव अवे के साथ. फन पिज्जा किचन आपके लिए लेकर आया है एक जबरदस्त गिव अवे. दिस इज $10 गिफ्ट कार्ड दैट यू कैन विन एंड इफ यू विन तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको फन पिज्जा किचन फ्रिस्को की लोकेशन पे जाना पड़ेगा इस गिफ्ट कार्ड को अवेल करने के लिए या आप कह लीजिए पिक करने के लिए. सो यू हैव टू गो टू फ्रिस्कोज लोकेशन सो कीप दैट ड्राइविंग डिस्टेंस इन योर माइंड. और एक और बात आपको बताऊं फन पिज्जा किचन का मेन्यू तो हम सभी जानते हैं मतलब देसी पिज्जाज में फन पिज्जा किचन को कोई बीट नहीं कर सकता और अब दे हैव कम अप विद अ मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप. हर तरह का मैक्सिकन फ्लेवर चाहे वो वेज ही हो चाहे वो चिकन हो चाहे वो सी फूड हो मतलब इट इज अ फ्लेवर फिएस्टा जो आपके लिए अरेंज किया है फन पिज्जा किचन ने. Out their menu and go visit them and see what is the hype about. और इसी के साथ ये जो $10 का गिफ्ट कार्ड है इसे जीतने के लिए अब जो गाना मैं आपके सामने प्ले करूंगी ये भी कंपोज किया था जी नदीम श्रवण के डुओ ने. आपको ये गाना सुन के मुझे ये बताना है कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया है और इसके सिंगर्स कौन हैं. ये जो दो सिंगर्स हैं यानी कि इट्स अ डुएट तो ये जो दो सिंगर्स हैं ये भी उस जमाने में जब 90s के दौर में जब ये दो सिंगर्स साथ मिलकर गाते थे तो ऑलमोस्ट एक हिट गारंटी थी कि ये गाना तो हिट होना ही होना है. सिंगर्स का नाम बताइए और मूवी का नाम बताइए और जीत लीजिए ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

ऑल राइट जी, आपके लिए गिव अवे आया था और गिव अवे फन पिज्जा किचन की तरफ से आया था। आपके पास मौका था ये $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का। गाना आपने मेरा मनपसंद, वन ऑफ द मनपसंद गाना सुना, दिस इज गवाह है, चांद तारे गवाह है। मूवी का नाम और सिंगर्स का नाम पूछा था, मूवी का नाम तो गाने के अंदर ही मौजूद था, इसीलिए इट वॉज वेरी सिंपल, दामिनी और मेरी दामिनी, तो दामिनी फिल्म का नाम था। और जो हमारे सिंगर्स हैं वो हैं जी कुमार सानू और अलका याग्निक। आप सबने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। हमारे पास आप जानते हैं कि जो जितने भी कॉल्स आते हैं मैं उन सबको एक नंबर असाइन करती हूँ जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल्स आती हैं, और फिर मैथ के फॉर्मूले से विनर पिक किया जाता है, बिकॉज आप लोग इतने स्पेशल हैं कि मैं एक लिसनर को हरगिज पिक नहीं कर सकती। तो आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं जी कॉलर नंबर 5, विच इज जया गांधी। सो जया, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। आपको फ्रिस्को की लोकेशन पे जाना है, 2 दिन दीजिए हमें आपका नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने, and then you will have about 7 days to go and pick your गिफ्ट कार्ड। तो ये तो हुई आपके लिए ये बात, थैंक यू वंस अगेन। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, यू पिक अप दैट फोन, यू एंगेज योरसेल्फ, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू फॉर एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑडियंस। अच्छा जी, ये जो फिल्म दामिनी की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको ये बताना जरूरी है कि दामिनी इज डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। आई थॉट मीनाक्षी शेषाद्री वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द मूवी, और खास तौर पर सनी देओल, तारीख पे तारीख। अब ये आइकॉनिक डायलॉग को कौन भूल सकता है, या फिर वो 2 किलो का हाथ, आई थिंक 2 ही बोला था उन्होंने, कि पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है वाली सिचुएशन है। सो दिस इज द क्लासिक दामिनी, जिसने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे व्हेन इट वाज रिलीज। लेकिन अब मैं आपके लिए जो गाना लगा रही हूँ 90s का, नदीम श्रवण का म्यूजिक, समीर और सुरेंद्र साथी की लिरिक्स, और फिल्म डायरेक्ट की थी तलत जानी ने। ये फिल्म है रंग, जिसमें एक बार फिर हमें नजर आई दिव्या भारती। जैसे मैं आपको कह रही थी कि मेजर जो दिव्या भारती की फिल्में थी उसमें म्यूजिक कंपोज नदीम श्रवण ने किया था। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल नंबर, वंस अगेन दिव्या भारती एंड आयशा झलका।

और अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स शिप कराने हैं, या आपने कोई बॉक्सेस मूव कराने हैं, या फिर पूरे का पूरा घर ही आपने मूव कराना है, या खाली गाड़ी कहीं इधर से उधर मूव करानी है, तो SFL Worldwide is the place. ना सिर्फ इंडिया में मूविंग, विद इन द US मूविंग, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आपने मूव करना है तो SFL Worldwide आपको हेल्प कर सकता है. आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए 1-800-691-2335 पे, या फिर SFLWorldwide.com. नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में आपकी मूविंग करेंगे. जो भी आपने मूव कराना है, भिजवाना है, SFLWorldwide.com पे लॉग आउट कीजिए.

वो 90s का बॉलीवुड लेकर आई हूँ आपके लिए ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज कुछ जो है गाने आपके लिए लेके आई नदीम श्रवण की जोड़ी ने, जो कंपोज किए 90s के वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी में इनको शुमार किया जाता था. अच्छा, नदीम श्रवण का जो खासा था कि उनके सॉन्ग्स में मेलोडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी. ढोलक हो, तबला हो, संतूर हो, फ्लूट, वायलिन, स्ट्रिंग्स, उन्होंने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया. गजल इन्फ्लुएंस उनके गानों में काफी मिलता था. कॉम्पोजिशंस में गजल की सॉफ्टनेस होती थी, इमोशनल डेप्थ होती थी, और वो जो एक फील होती है वो डेफिनेटली, वो जो फ्रीक्वेंसी आपके दिल के साथ मैच करती थी उनके म्यूजिक की जो वो कंपोज किया करते थे. और कई गाने तो मैंने उनके जो नोटिस किए कि बड़ी सिंपल रोमांटिक अरेंजमेंट होती थी उनकी. म्यूजिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, फौरन दिमाग को समझ आता था, दिमाग से सीधा दिल पे लगता था, लिरिक्स उसके साथ एसोसिएटेड होते थे और हमारे इमोशंस की अक्कासी कर रहे होते थे, इसीलिए वो गाने हमें बहुत खूबसूरत लगते थे. और जो है खास तौर पे एक बार आप उस जमाने में, मुझे याद है कि ये वो गाने होते थे, एक बार आप इनका मुखड़ा सुन लो या इनका वो कर लो तो फिर बस आपको यू नो यू गेट हंग ऑन टू दैट सॉन्ग और वो आपको याद रह जाता था. ऐसी पावर होती थी उस वक्त के 90s के बॉलीवुड के गानों में. तो कुछ ऐसे ही गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. अब जो अगला गाना मैं प्ले करूँगी आपके लिए ये लिया गया है जी कौन सी फिल्म से, ये अभी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ क्योंकि चंडीगढ़ बाइट्स एंड आलन की तरफ से आपके लिए ये गिव अवे आया है. और क्या गिव है आपके लिए? $10 ऑफ है ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो जाइए चंडीगढ़ बाइट्स एंड आलन, खाइए, $50 का आपका बिल बना तो $10 ऑफ इफ यू विन दिस कॉन्टेस्ट. लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, chandigarhbites.com पे जरूर लॉग इन कीजिए और देखिए कि उनका मेन्यू क्या है, उनके स्पेशल्स क्या हैं. इट इज ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो टू अ रेस्टोरेंट. सो chandigarhbites.com इज द वेबसाइट. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन आलन. और लंच स्पेशल की आपसे खास उनकी बात करनी है. एक स्पेशल थाली वो देते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे, लंच स्पेशल थाली से कहते हैं. और इसमें डिशेस जो हैं वो रोटेट करती हैं, मतलब हर रोज़ आपको कुछ नया डिश मिलेगा, नई चीज़ मिलेगी, मोनोटनी नहीं है, बोर नहीं होंगे आप. हर रोज़ भी जाके लंच करेंगे, थाली खाएंगे तो आप इन्जॉय करेंगे. सो दिस इज चंडीगढ़ बाइट्स एंड आलन फॉर यू. और इफ़ यू वांट टू विन $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर तो मुझे कॉल कीजिए और बताइए. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नदीम श्रवण की जोड़ी ने कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता. आपको मुझे वो नंबर बताना है 9722355555. नॉमिनेशंस तो उन्होंने बेतहाशा पाई, पर जीता कितनी बार उस अवार्ड को, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज.

जी हाँ जी, अपने करियर में नदीम श्रवण की जोड़ी ने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, एंड दैट वाज 1991 फॉर द मूवी आशिकी, 1992 फॉर साजन, 93 फॉर दीवाना एंड 1997 फॉर द मूवी राजा हिंदुस्तानी. उसके बाद उन्होंने स्क्रीन अवार्ड्स जीते, जी सिने अवार्ड्स जीते, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड इन मूवीज के लिए 4 दफा जीता. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. और आज की जो हमारी लकी विनर है, चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से $10 ऑफ योर इन बिल ऑफ $50 और मोर आया था. और लकी विनर आज की हैं जी नेहा, नेहा गुप्ता. थैंक यू नेहा फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स. नेहा, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाएंगे. फिर 7 डेज का टाइम है आपके पास टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. फनी जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू so much.

अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं आज नहीं हम तेरा नाम लेंगे, लेकिन हम इस रेस्टोरेंट का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि अगर आप क्रेव कर रहे हैं अपने बचपन का जायका, तो देन होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स, खुल चुका है फ्रिस्को में. लोकेशन आपको बताने लगी हूँ, 2963 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को, टेक्सास. ऑफकोर्स जाइए और इंजॉय कीजिए उनके फेवरेट्स, जैसे कि चना पूरी हुआ, सैंडविचेस हुआ, डिलिशियस करीज, और साथ ही साथ उनकी लेजेंडरी होको कोल्ड कोको. एवरीबडी स्वेयर्स बाय इट, यू हैव टू गो एंड ट्राई इट. एंड मजीद उनका मेन्यू वगैरह आप जानना चाहते हैं तो फिर उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, चेक आउट देयर वेबसाइट hoco.us, विच इज HOCCO, hoco.us. उनका मंत्र बड़ा सिंपल है, कम हंग्री, लीव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया. और अब आपको दो जबरदस्त ऑफर्स दे रही हूँ जो होको की तरफ से आई हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं, एंड गाइज यू हैव अ वैलिड स्टूडेंट आई डी, देन 20% आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा विद दैट वैलिड स्टूडेंट आई डी वेन यू गो टू होको. सो दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डील फॉर यू. इसी के साथ, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, यू हैव अ वैलिड एम्प्लॉय आई डी, तो लंच पैक्स पे आपको मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 20% डिस्काउंट मिलेगा. सो दीज आर द टू ब्रिलियंट ऑफर्स दैट दे हैव राइट नाउ रनिंग फॉर यू, चेक दम आउट. एंड नदीम श्रवण का जो आज हम ये स्पेशल कर रहे हैं, इनकी मेलेडीज में इनकी जो यू नो म्यूजिक को चार चांद लगाने वाली जो आवाज़ें हैं, वो कुछ खास आवाज़ें थी जिनके साथ नदीम श्रवण काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कुमार सानू का. कुमार सानू जी के साथ नदीम श्रवण ने, मुझे लगता है, कोई हज़ारों गाने कंपोज किए होंगे. उसके साथ जो दूसरा नंबर है अनुराधा पोडवाल जी का, एक क्रूशल वॉइस थी वो अनुराधा पोडवाल जी की नदीम श्रवण के शुरू के सालों की अर्ली सक्सेस के लिए. अलका याग्निक के साथ नदीम श्रवण ने बहुत काम किया और बहुत एंजॉय करके काम किया. उदित नारायण, एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये कुछ खास नाम थे जो नदीम श्रवण जब अपना गाना लिखते थे तो शायद इन लोगों को अपने जहन में रख के लिखते थे कि इनकी आवाजें हम इस गाने में डालेंगे या समथिंग लाइक दैट. सो कुछ ऐसे होते हैं ना लोग म्यूजिक कंपोजर्स के लिए भी, जैसे डायरेक्टर्स किसी को ध्यान में रख के कोई रोल लिखते हैं, राइटर्स ध्यान में रख के, इसी तरह ये म्यूजिक कंपोजर्स इनको ध्यान में रख के गाने लिखते थे, गाने कंपोज करते थे.

0: और म्यूजिक की बात हो और लिरिक्स की बात ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. और खास तौर पे नदीम श्रवण के म्यूजिक को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए समीर साहब का बहुत बड़ा रोल है. वन ऑफ नदीम श्रवण्स डिफाइनिंग कोलैबोरेशंस वाज विद द लिरिसिस्ट समीर. कुछ बेहतरीन गाने जो उन दोनों ने, टीम ने मतलब, एक साथ दिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, या फिर नजर के सामने, देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, परदेसी परदेसी जाना नहीं, या फिर मेरी महबूबा फ्रॉम परदेस. समीर के सिंपल सिंपल से वर्ड्स, नदीम श्रवण की सिंपल मेलोडीज, प्लेबैक सिंगर्स की इमोशनल डिलीवरी, और बन गया सुपरहिट का फॉर्मूला. स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
5: वी नीड टू टॉक.
6: अब क्या हुआ?
5: नथिंग, इट्स नॉट यू.
6: ओह नो,
5: इट्स द डिस्टेंस.
6: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट.
5: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन.
7: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर. सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग. योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर. सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
7: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
6: Fear not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday,

104.9 FM पे आप हर थर्सडे एक्सेप्ट द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ सुनते हैं बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज स्पॉटलाइट में हमने बॉलीवुड देखी, बॉलीवुड स्पॉटलाइट नहीं, वो 90s का बॉलीवुड. बॉलीवुड स्पॉटलाइट तो हम ट्यूसडेज को लेकर आते हैं, लेकिन आज हमने वो 90s के बॉलीवुड में बॉलीवुड स्पॉटलाइट को दोबारा से डाला है. और आज हमने स्पॉटलाइट डाली है जी नदीम श्रवण की खूबसूरत म्यूजिक पे. सो दिस इज वो 90s का बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन नदीम श्रवण. लेकिन बिफोर दिस के मैं कुछ और बातें आपको बताऊं. इस वक्त आ चला है आपको वेदर की अपडेट देने का. आज है जी थर्सडे सितंबर द 10th, 4:38 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 98 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 103% चांस है ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स. सो लेट्स सी व्हाट हाउ दैट गोज. शाम रहेगी मोस्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग एज वेल. पोलन काउंट आज का एक बार फिर काफी हाई है 10.8. सो अगर आप पोलन से परेशान रहते हैं तो प्लीज टेक योर रेमेडीज. रैगवीड, एल्म एंड ग्रास इज व्हाट इज बॉदरिंग टुडे. यूवी इंडेक्स इज 9 व्हिच इज ऑफ कोर्स हाई. सनराइज आज का हुआ 7:06 पे, जबकि आज का सनसेट होगा 7:39 PM पे. With this weather forecast, I am taking you back to Nadeem Shravan. अच्छा, शाहरुख खान की जिंदगी में नदीम श्रवण का बहुत बड़ा रोल है. फिल्म थी दीवाना, एंट्री हो रही थी एक नए हीरो की, और वो भी मतलब ऋषि कपूर को टक्कर देने वाले हीरो जो उसमें हमें नजर आए थे. जाहिर वो सेकंड लीड थी, फर्स्ट लीड तो ऋषि कपूर थे उस फिल्म के. और म्यूजिक किसने दिया उस फिल्म का? नदीम श्रवण ने. लिखा किसने उस म्यूजिक को? समीर साहब ने. तब आप ये देखिए, एक यंग एंट्री हो रही है, एक लड़का ही कह लीजिए आप. 1992 में जब दीवाना आई तो क्या कमाल की बात है, क्या उनको म्यूजिक कंपोजर मिले, क्या उनको लिरिसिस्ट मिले, और फिर जो गाने बने दीवाने के उससे मशहूर तो उन्होंने होना ही था.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट कि यूएस डॉलर कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो राइट नाउ जी यूरो अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे स्टैंड कर रहा है, इंडियन रुपी 95.69 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.38 पे ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तानी रुपी 277.35 पाकिस्तानी रुपीज आर स्टैंडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर, जबकि नेपाली रुपी 153.19 पे स्टैंड कर रहा है, बांग्लादेशी टका 123.41 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर. और अब जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड प्राइस की क्या अपडेट है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि 1990 से जो नदीम श्रवण की एल्बम्स हिट होनी शुरू हुई तो हर साल ऑलमोस्ट उनकी एल्बम जो है वो टॉप थ्री सेल्स के लिहाज से टॉप थ्री एल्बम्स में आने लगी. वी स्टार्ट विद 90, नंबर वन सेल्स हुई उस साल आशिकी की एल्बम की जो कि नदीम श्रवण का म्यूजिक था. 1991 में साजन रही नंबर वन पे, फूल और कांटे रही नंबर टू पे, सड़क रही नंबर थ्री पे. तो तीनों टॉप थ्री जो हैं वो 1991 के नदीम श्रवण की एल्बम्स थी. 92 में दीवाना रही नंबर वन सेल्स पे, 93 में दिल वाले कितना हसीन चेहरा अगर आपको याद हो वो रही नंबर वन पे, 95 में राजा रही नंबर टू पे, 96 में एक बार फिर राजा हिंदुस्तानी नंबर वन पे वापस आई और अग्नि साक्षी नंबर थ्री की सेल्स पर रही, और इसी तरह परदेस, धड़कन, राज, अंदाज, बेवफा ये सारी टॉप थ्री में रही एज वेयर सेल्स आर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ इंडिया. सो दैट इज द पावर ऑफ दैट म्यूजिक डुओ नदीम श्रवण.

एंड विद दैट इट इज टाइम टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. जी, अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग, इस वक्त गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,316.68, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $138.78. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $3.16 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $98.21 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू एंड योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आई स्टिल हैव अबाउट आई गेस 2 or 3 songs of Nadeem Shravan for you.

और ट्रैफिक की अपडेट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं जी। इस वक्त एक्चुअली कोई इंसिडेंट तो लकीली हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक डिसेबल्ड व्हीकल नजर आ रही है लूप 12 पे टुवर्ड्स SH 356 साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन। बट दैट इज प्रीटी मच ऑल। द सिवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड माइनर, ऑल्दो जब रश आवर होता है तो माइनर भी थोड़ा सा स्ट्रांग और हैवी लगने लगता है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से यही एक इंसिडेंट है जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर of Umar Khwaja. So, aap jahan bhi ja rahe hain, wherever you are going, please drive safe, be very vigilant, be very careful.

वो 90s के बॉलीवुड का नदीम श्रवण स्पेशल का बस इख्तिताम हुआ चाहता है. थैंक यू सो मच. आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट प्लेइंग ऑल दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक फॉर यू. और मुझे खुद भी पता चला कि 90s में नदीम श्रवण कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और कितने खूबसूरत खूबसूरत उन्होंने गाने दिए, जो कि मैं और आप वैसे सुनते हैं और इंजॉय करते हैं. सिंगर्स के नाम याद रह जाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर को कहीं कभी कभी हम भूल जाते हैं. सो दैट इज द म्यूजिक, द रूट जहाँ से ये सारा म्यूजिक निकलता है. अच्छा जी, इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू से माई बाइस टू यू. कल है फ्राइडे, बच्चा पार्टी, रेडी हो जाइए. फ्राइडे को आप जानते हैं किड्स जंक्शन लेकर आती हूँ 3 बजे से 4:30 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं चिलो पार्टी में. आप ही में से कोई एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आरजे हमारे साथ होता है जो मेरे साथ चिलो पार्टी को होस्ट करता है. अगर आप या आप चाहती हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेरे साथ चिलो पार्टी को होस्ट करे, तो जो हमारी वीडियो आती है जी इंस्टाग्राम पे, आप उसके नीचे अपना नाम, बच्चे का नाम, अपनी बच्चे की एज और क्लास लिख के बता दीजिए और फिर हमारी टीम आपसे गेट बैक करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी हाउ योर चाइल्ड कैन बी द नेक्स्ट आरजे विद मी ऑन चिलो पार्टी ऑन किड्स जंक्शन एट 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. आई विल सी यू टुमारो वंस अगेन 2:30 PM टिल 5 PM सेम प्लेस 104.9 FM फन एशिया रेडियो. हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे. श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द शो and for calling and for making my day.

solve the problem or leave the problem. Do not live with the problem. Once again, you're tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your evening drive time show, jiska naam hai The Bindaas Show. Brought to you by your very own Banda Bindaas, Marvin Das, and I am with you Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. And we are sitting on a Thursday. That means इस हफ्ते का ये आखिरी शो होगा मेरा. मंडे को फिर से आऊंगा. If God gives me that chance. And what a lovely start to this show, right? Solve the problem or leave the problem. Do not live with the problem. एक बात accept कर लो यार. जिंदगी में या तो हर इंसान किसी problem में है, किसी प्रॉब्लम से निकला है या किसी प्रॉब्लम में जाने वाला है. दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वी कीप थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम रादर देन थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. अगर हल है तो उसकी तरफ काम करें, नहीं है तो फालतू का बोझा छोड़ दो यार. It is 5:12 in the studio clock and kuch acche gaano ke saath rakhunga ji aapko company. If you're celebrating something, our studio lines are always open for you. 972-235-5555 is the number to the studio. All are accepted. Birthdays, anniversaries, ya agar down feel kar rahe ho na, mujhse baat karo. Dil garden kar dunga yaar.

लवली ट्रैक जिसका नाम था जी दिल लगी एंड द मूवी नेम वाज दिल लगी सनी देओल एंड उर्मिला मातोंडकर आई डोंट थिंक दे हैव एवर एक्टेड आउटसाइड ऑफ दिस फिल्म इट वाज अ लाइट हार्टेड फिल्म आई लव्ड इट एंड इफ यू हैवंट सीन इट आई विल रेकमेंड गो चेक इट आउट यार कुछ पुरानी चीजों में बड़ा मजा है एंड यू नो समबडी राइटली सेड एक कॉल आया था मेरे पास कहते हैं यार माविन द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल स्टार्ट टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम रादर देन द सॉल्यूशन एंड आई डो नॉट डिसएग्री हमारा फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एंड इफ देयर इज वन वर्क टुवर्ड्स इट नहीं है तो लेट इट बी ऑन द ऑलमाइटी यार उस पर छोड़ दो ना व्हेन यू कैन नॉट चेंज समथिंग डोंट फोकस ऑन चेंजिंग इट विद योर एफर्ट्स एंड स्पेशली अपने दिमाग को फालतू का बर्डन देना छोड़ दो इसको बोझा उठा के कोई फायदा नहीं है जब जगह है रखने की तो रख दीजिए ना व्हाई टू कैरी इट अलोंग स्टूडियो का नंबर 972-235-5555 वन ट्रैक दैट गॉट रिलीज्ड टू डेज अगो दिलजीत पाजी ने नया बम फेंका है जी And this one is for you all. This part of the show is brought to you by attorney Omar Khwaja. Ever involved in an accident, slip or fall, make sure to remember this name. And after you're done calling 911 and the other settings, give him a call to get you compensated. AttorneyOmar.com. Yeah.

0: The name of the track here was Devil, Diljit Dosanjh Nikala Ji ye gana about 2 days ago, and it's crossing 1 million views as of right now. You know, Nana Patekar hai ek actor hamare Bollywood ke. Mujhe ek dimag mein sawal tha ke Nana Patekar sahab ko Nana ke jo Nana hai, kya wo bhi Nana ko Nana hi bulate hain? Sawal hai na? Aisa hi hota hoga. Nana? Haan Nana? Abhi aaya break ke baad.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
5: Wait, itna sab aur price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
10: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
11: अरे यार, घर मिल गया.
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
13: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
14: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to FunAsia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you FunAsia Radio for spreading the word.

0: अक्सर सुना है मैंने लोगों को कहते हुए, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। यार मुझे इस बात में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर प्यार अंधा होता तो किसी को मुझसे भी तो होता। पुराने जमाने में होता होगा प्यार अंधा, आजकल तो बैंक बैलेंस, जॉब, रिटायरमेंट प्लान, घर, गाड़ी सब देख रहा है।
1: रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मैं रहूंगा जी आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock थर्सडे इवनिंग, सितंबर की 10 तारीख। और सितंबर 10 को बहुत चीजें खास हुई थी जी। आज ही के दिन, इफ यू रिमेंबर, दी एक्स फाइल्स याद है सीरीज आई थी, उसका एक म्यूजिक था पर्टिकुलर, सुनाता हूँ आपको बात करता करता। तो जो एक्स फाइल्स थी उसका बहुत चर्चा था उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज टॉकिंग अबाउट द पैरानॉर्मल, है ना, जो हम नहीं देखते। ये द एक्स फाइल्स वॉज क्यूरेटेड टूडे एंड इट स्टार्टेड एयरिंग ऑन टुडेज डेट, व्हिच डेब्यूटेड ऑन फॉक्स टेलीविजन। द ईयर वॉज 1993 एंड इट वॉज ऑन 10th of September। कितने साल हो गए भाई, 26 ये और 7 वो, अबाउट 33 years, 33 साल पहले। यार लगता ही नहीं है, तो कल की बात लगती है बिडू। But if you are X-Files buff, go back in history and watch some of your favorite episodes that you saw back in the day. This is your evening drive time show and I'm going to be with you till 7 o'clock this evening.

0: अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मौसम रूठा हुआ है और आपको लोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल हमारे पास हैं दी एसबीआई लोन एक्सपर्ट्स मिस्टर शाहिद पंजवानी, हु हैज बीन कमिंग ऑन दिस रेडियो फॉर क्वाइट सम टाइम एंड ही हैज हेल्प्ड मी पर्सनली एंड मेनी अदर बिजनेस दैट आई नो. एंड इफ आई थिंक लोन्स देन आई थिंक ऑफ शाहिद पंजवानी साहब. इज नंबर इज 8177866333. एक सेकेंड में बता देता हूँ जी, मैं आपको नंबर भी पंजवानी साहब से खुद ही पूछेंगे वैसे तो. बट ऑल द बिजनेस ओनर्स दैट यू आर इन डी एफ डब्ल्यू, इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं हम यहाँ पे, एंड इफ यू आर एवर लुकिंग फॉर एनी ग्रोथ इन योर बिजनेस देन द पर्सन दैट आई वुड रिकमेंड वुड बी पंजवानी साहब. लेट मी कॉल हिम ऑन द एयरवेव्स एंड गेट यू सम इन्फॉर्मेशन इफ यू आर लुकिंग टू गेट अ न्यू बिजनेस गोइंग, हाउ टू डू दैट. गुड इवनिंग शाहिद भाई, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग ग्रेट. गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल लिसनर्स.
0: पंजवानी साहब, ये बताइए कि यू नो वी टॉक अबाउट डिफरेंट लोन ऑप्शंस फॉर पीपल इन DFW एंड टेक्सस एंड अदर प्लेसेस. ये बताइए कि जो बंदा नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कुछ अपना कैपिटल आपके पास होता है बट द रिक्वायरमेंट इज हायर. इन दैट केस कैन द लोन एक्सपर्ट्स और SBA कम इन टू प्ले एंड हेल्प देम आउट?
1: We can definitely help them out and we always talk about low down payment, but I think I need to talk about one more part of it more clearly because somebody called and they wanted to understand this part. So hum hamesha baat karte hain kam se kam down payment mein, most of the people who want to buy a business, unke back of the mind goal yahi hota hai ki kam se kam paise mein kaise mera naya business shuru ho jaye ya main khareedu. So same example again, if you are buying a business and the total project cost is $500,000, let's take a bigger number because each time when I use 500K, people call me and say, 5 lakh mein aajkal Dallas mein kya milta hai ya Texas mein kya milta hai. So let's take a $1 million number. Aapko 10% down payment karna hai, which is around $100,000, 900K ke aaspaas, or whatever closing cost is, agar franchise hai, to franchisor ki fees, wo sari cheeze fees mein laake loan ho jayega. Secondly, turning around, what we do is, we will give you working capital for additional 50,000 to 100,000. So, pehle to apne $100,000 down diya aur baki ka paisa loan ho gaya jo aapka total project tha. Phir turning around, humne aapko most cases mein 50,000 ya lakh dollar tak aapko working capital de dete. To jo aapne down diya, wo sara paisa aapko wapis aa jata hai. You can call it's a washout. You did not put anything or whatever you did, it came back to you and you ended up buying business with as low as maybe 5% down and in some cases zero down because we were able to do $100,000 working capital or entire down payment as working capital. This number differs case by case basis ki kya project hai, kitna operational expenses hai.
0: Let me understand this again, Shahid bhai, jo aapne bola ke if you need a $1 million loan, let's say you are putting $100,000 down, jo ki aapka 10% payment hai.
1: Not $1 million loan, let's say your project is $1 million total, 950 ya 70,000 ka aap koi business khareed rahe ho, real estate khareed rahe ho, closing cost fees wagera mila ke $1 million.
0: $1 million hai, you put 10% down. And you'll be able to give them another 100,000 or 50,000.
1: 50 to 100K ki range mein working capital baad mein mil sakta hu.
0: That is an excellent opportunity, listeners. Agar aap sun rahe ho, the number that you need to reach out is 817-786-3338. Before I let you go, Shahid bhai, ye bataiye ki iske liye, what is the credit score requirement of an individual?
1: Thanks for bringing this up. Please, no credit score ka isse koi connection nahi hai. As long as aapki credit mein negative cheeze nahi hai, collections nahi hai, bankruptcy nahi hai, derogatory items nahi hai, 600-640 ke score mein bhi humne loan kiya hai. Dekhna zaruri hai ki jo business aap khareed rahe ho, kya usme cash flow enough hai ki jisse loan ki payment ho sakti hai.
0: Wonderful. That was Shahid Panjwani Saab from One World Business Capital. Give him a call or reach out to his office. 817-786-3338. That's 817-786-3338. That was Shahid Panjwani with the One World Business Capital.

0: वेल इफ यू बाइंग सेलिंग और प्लानिंग योर नेक्स्ट मूव, आपकी अपनी फन एशिया की नवनीता खेमका इज अ रियल टर्न नाउ विद केलर विलियम्स रियल्टी विद मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. शी इज द वन हु इज कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूदर. तो अगर आप घर लेना चाहते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, एवरी होम एंड एवरी बिजनेस हैज अ स्टोरी एंड शी विल क्रिएट योर विद हर. गिव हर अ कॉल 347-449-4242. That's 347-449-4242. Uske saath saath, this tomorrow's day is a very special day. And if you haven't gotten your tickets yet, to kis baat ki wait kar rahe ho yaar? Ab Kumar Shanu khud aapke ghar aake bolein ki aao mera show dekho. Limited seats are available. This is tomorrow at this lovely venue, jo ki abhi brand new banaya gaya. It is called the Robinson Fine Arts in Plano. And this is a timeless, melodious night with unforgettable numbers, which is called Pure 90s Nostalgia. And the show is also called the Unforgettable 90s with the one and only Kumar Shanu, jinki awaaz Bollywood ke sare super hit 90s ke gaano mein hai. He's going to be singing live for you. Aisa experience bahut kam milta hai. And once in a lifetime wali baat hi hogi. Aapne, aap mein se kis ne Kumar Shanu sahab ko live gaate hue suna hai? Nahin suna na? Nahin suna hai to zarur jaiye, because inke gaane aap sab ko rate hue hain. You will sing along with all those songs that you grew up with. Isme kai pyar mohabbat ki yaadon wale gaane hain, kai heartbreaks wale gaane hain, kai gaane aise hain jo aapne apne doston ke saath, apne family members ke saath sune hain, enjoy किए हैं, फुल ऑन डांस किया है उन पे. तो तैयार हो जाइए, कल है जी ये शो. टिकट्स आर अवेलेबल एट eventbrite.com एंड sulekhatickets.com. गिव देम अ कॉल 214-869-2668 एंड आई विल सी यू देयर टुमारो.
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
2: लैपटॉप में.
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव.
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
3: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: ये तारा वो तारा हर तारा.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

0: Kumar Shanu live in concert for you. That is tomorrow, 11th of September. And this is going to be at the brand new Robinson Event Center, Fine Arts Center in Plano. Tickets available at eventbrite.com and sulekhatickets.com. For now, it is time to talk about a topic jo hame tang to karta hai, par iske baare mein hum baat kisi se nahi karte. Andar hi andar khud ghutte rehte hain ki yaar ye itna loan pada hai hamare sir pe, iski payment nahi ho rahi hai, koi mushkil halaat aa jate hain life mein, unexpected expenses ho jate hain, and then you get into this chungal of debt ya credit. Now, if you are going through that problem, ghar mein sukoon to hai nahi, kyunki bhabhi ji ne to aapko jeene nahi dena. कि इस क्रेडिट को खत्म करो, डेट को खत्म करो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है. इसके लिए एक सोल्यूशन है, उसका नाम है उरा डेट. एंड आई एम गोना कॉल अमन टू टेल यू मोर. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: गुड इवनिंग फाइनेंशियल. सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. आज है 10 तारीख, लेकिन 10 तारीख और 15 तारीख के बीच में बहुत सारी चिट्ठियां आपको मिलेंगी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरने के लिए, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में काफी चिट्ठियां आ चुकी होती हैं, काफी पेमेंट स्केड्यूल कर चुके होते हैं. लेकिन इस बार पेमेंट करने से पहले, मिनिमम पेमेंट भरने से पहले, एक बार उरा को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उरा ये प्रॉमिस करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए, तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले उरा को कॉल कीजिए. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल भी, बिजनेस भी, स्टोर के भी, और कोई भी प्लास्टिक मनी. लेकिन मिनिमम पेमेंट करते रहना आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पैसा भी वेस्ट होता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और डेट भी नहीं उतरता. इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल लोन है जो मिनिमम पेमेंट के कारण उतर नहीं पा रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, या फिर गाड़ी जो बाय चांस बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट गाड़ी रिपोजेस हो गई, या फिर गाड़ी टोटल हो गई लेकिन इंश्योरेंस थी या इंश्योरेंस ने क्लेम पूरा नहीं दिया, तो जो बाकी बचा है वो आपको उतारना है, तो उस लोन को भी अगर आप नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवाना चाहते हैं, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914. या फिर अपने दोस्त अमन यानी मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, एनी टाइम कॉल मी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कॉल मी 9167637 6355. अगेन 9167736355. और यहाँ फिर हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो एक बार फिर से याद कीजिएगा, मिनिमम पेमेंट करने से पहले करेंगे तो फायदा ही फायदा है, आधे से ज्यादा कर्जा माफ

0: A powerful banger of a track right here on Fun Asia. This is It's Your Boy Badshah. This is Tetiri Pirse. And 4 months ago, this one came out. 20 million views it's crossing on YouTube. You're listening to your evening drive time show, The Bindaas Show on Fun Asia. Yaad rakhiyega, agar plano mein hai aap, you're looking for some great food, then fried crispy chicken. जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है. माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स बनाते हैं जी. और अगर आपने उनकी निहारी और ग्रिल नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया अभी प्लेनो में. बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, स्पेशल सेलिब्रेशन, दे आल्सो ऑफर अ बैंकेट हॉल. आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर क्यूजीन इन प्लेनो. दिस इज राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ आलमा एंड स्प्रिंग क्रीक, ईस्ट प्लेनो में. या फिर उनकी वेबसाइट पर जाके चेक दम आउट. सिग्नेचर क्यूजीन डॉट नेट इज दैट वेबसाइट फॉर यू. एक आदमी कुंभ के मेले में पकड़ा गया, दुआ मांग रहा था. दुआ क्या मांग रहा था? कह रहा था कि हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो. तो बोले क्या न्याय करो? कहता जी कुंभ के मेले में आप हमेशा भाई भाई को घुमा देते हो, पति पत्नी पे भी ट्राई करो. Alright, it's time for a giveaway and this one is coming from Fusion Republic, जो कि Richardson में खूब सारा शोर, खूब सारा प्यार बटोरने के बाद आपके लिए आ चुके हैं जी in Irving and they are offering you some lovely, lovely options. एक जीत सकते हैं आप सीरगा सांबा मटन दम बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी, absolutely free. याद रखिएगा, this is for their Irving location, which is located on 8080 Walton Boulevard, Irving, Texas. Familiar flavors, fabulous fusion. और usually उनका जो है special रहता है जी, there is lunch buffet every day. जी हाँ, सातों दिन 25 plus items, जिसमें apricot, malai kofta, chili paneer bao, mutton biryani and much more options. Night is always a la carte. Make sure to check them out. अब आपने मुझे बताना है जी इस इंसान का नाम, जो मैं अभी आपसे कुछ hints दूंगा आपको. And if you get me the right answer, make sure when you're answering me, you're able to go to Irving Fusion Republic and enjoy this food. आज के दिन एक filmmaker slash actor, acting कम की है, film में ज़्यादा बनाई है. आज उनका जन्मदिन होता है, 10th of September 1972. He has got 4 Filmfare Awards so far. And the government of France made him a Knight of the Order of Arts and Letters in 2013. Co-writer थे फिल्म सत्या में, जो कि 1998 में आई थी. उसके बाद डायरेक्ट की ब्लैक फ्राइडे 2004 में. एंड देन अ फिल्म बेस्ड ऑन द नेम सेक बुक बाय हुसैन जैदी अबाउट द 1993 बॉम्बिंग्स, विच वाज ब्लैक फ्राइडे. देन ही डिड अनदर मूवी कॉल्ड नो स्मोकिंग इन 2007 एंड देन केम गुलाल इन 2009. प्रोमिनेंट इनका जो प्रेजेंस है वो बड़ी विद 2-part क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 एंड द लंच बॉक्स, विच वॉज अ बायोग्राफिकल ड्रामा जो थी वो शाहिद आई थी उसके बाद. सो द लंच बॉक्स, देन द शाहिद, एंड शाहिद के लिए मिला था बैफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ही इज अ फिल्म मेकर. आज के दिन इनका जन्म हुआ है. और ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्राइम थ्रिलर सीक्रेट गेम्स, the first Netflix original series. He directed it in association with another director. Ek aur film banayi thi, Ugly 2014, Raman Raghav 2.0, inspired by the serial killer Raman Raghav. Ab aap mujhe batayenge inka naam, and if you tell me the right answer, and you're able to go to Irving to claim this giveaway, which is Fusion Republic ki biryani, veg ya mutton, choice is yours. Good evening, Fun Asia, who's this?
1: Hi, Marvin, this is Shafkat.
0: शफकत जी, कैसी हैं आप?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम ब्लेस्ड. और शफकत अमानत अली साहब का वो जो गाना है ना, आंखों के सागर, बहुत बढ़िया लगता है मुझे. और शफकत नाम सुन के आज मैं खुश हुआ. आप बताइए, अरविंद जा सकती हैं पहले?
1: जी, डेफिनेटली
0: डेफिनेटली. देन गुड, टेल मी द नेम ऑफ दिस फिल्म मेकर आई एम टॉकिंग अबाउट.
1: अनुराग कश्यप.
0: अनुराग कश्यप इज द राइट आंसर. व्हाट वाज द इजी पार्ट देयर? किस चीज ने इजी कर दिया? नो स्मोकिंग ने के ब्लैक फ्राइडे ने के?
1: नहीं, द मोमेंट यू सेड वासेपुर,
0: गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक या दैट स्टैंड्स आउट फॉर मिस्टर कश्यप. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल. मिस, होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर एंड आई विल गिव यू योर गिव अवे. यस, इट इज इंडीड अनुराग कश्यप, बॉर्न ऑन इन गोरखपुर, यूपी से ही बिलोंग करते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डू गैंग्स ऑफ वासेपुर सो वेल, बिकॉज ही इज फ्रॉम द एरिया. ही इज 54 इयर्स ऑफ एज टुडे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर अनुराग कश्यप. एंड सम ऑफ यू डोंट नो, उनका बर्थ नेम पता है क्या है? रिंकू सिंह. नहीं मालूम था ना? मंगलम, ओम मंगलम, मंगलम, ओम मंगलम, मंगलम.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
6: बेटा 95% आए.
7: हाँ मम्मी.
6: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
8: मेरा?
6: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

It is 6:06 in the studio clock और मैं आ चुका हूँ जी for the last hour of this evening drive time show. 5 बजे से 7 बजे तक रहता है जी ये show. First hour is from 5 to 6 and the 6 to 7 o'clock hour is now on us. September की 10 तारीख है जी. Thursday की शाम है and I'm going to make sure that you guys get some good company and good music as you do your chores. घर जा रहे हैं तब भी मैं कंपनी दूंगा. कुछ राशन लेने जा रहे हैं, कुछ भूल गए थे, भाभी ने बीवी ने दोबारा भेजा है, बच्चों को पिकअप कर रहे हैं, वट एवर यू डूइंग आई एम गोना मेक श्योर दैट यू आर एंटरटेन्ड. उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे आर लोकेटेड नियर यू एंड व्हाई आई कैन टेल यू दैट इज बिकॉज दे हैव मल्टीपल लोकेशंस इन DFW. अगर आपके पास अभी तक भी PCP नहीं है यानी कि योर ओन फिजिशियन, देन गेट विद देम. दे विल मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. And when I say very well, it's because they spend 30 minutes on each visit. Every consult is 30 minutes long so that they try to understand and get to the cause of the problem. Passion Health, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके लिए एक प्लान लेके आया है which is called the Passion Health Direct. That is just $85 a month. That includes your primary care visit, preventive care, medication management, telehealth when needed and more. And you can also get your labs done at discounted prices. I think that's a great deal. If you do not have insurance, $85 a month cuts it for you. And they might be at a location bahut aapke ghar ke kareeb. 214-666-6259 is their phone number. Call kariye ya text kariye 214-666-6259 or visit the website passionhealthphysicians.com. Congratulate karna chahunga main Shafkat ji ko jinhone jeeta ji hamari taraf se Fusion Republic ka ye giveaway. And you know what? Shafkat ji is from Pune. Pune nahi, Patna. और शफकत जी के पटना से मुझे एक बात याद आई कि एक ना यहाँ से फॉरनर हिंदी सीख के गया इंडिया गया तो वहाँ एक लेडी मिली उससे. उसने पूछा जी आप कहाँ से हैं, तो लेडी कहती है पटना. वो कहता है पटना कहाँ है, कहती जहाँ पटा लो. पटना कहाँ है, जहां आपका दिल करे.

0: प्यूडीपाई वॉज द नहीं, गाने का नाम था, फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल। और मुश्किल एक और चीज़ है, ये डिसाइड करना कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊँ, कौन सा बंदा मुझे जेन्युइन रेट देगा, कौन मुझे सबसे अच्छी कवरेजेस देगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ चीप इंश्योरेंस प्लान, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट द पीपल दैट स्टैंड बाय योर प्लान, जब क्लेम करना हो, जब कोई प्रॉब्लम आए, एक नाम याद रखिएगा, हुमैरा जुमानी सिनाडा इंक इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड यू कैन गिव दम अ कॉल एनी टाइम। ये भी बता दूं कि हमारे साथ अब वो जुड़ेंगी टू गिव यू टुडेज इंश्योरेंस अपडेट। सो इफ यू हैव नॉट गॉट इंश्योरेंस फॉर एनी ऑफ योर स्टफ, घर गाड़ी बंगला, गेट इट डन नाउ। गुड इवनिंग हुमैरा जी, प्लीज शेयर द अपडेट टुडे।
1: Yes, so I would like to share most important update today that open enrollment is coming up and there is a very, very big change coming up. So I would advise all the listeners to contact their agents, check their eligibility for the subsidies. If they can qualify for 2027 subsidies, then they are fine. If they cannot, then they have to find other options. There are other options available, but the premium is more on that one. So they need, if they have any pre-existing condition, this is the right time to start working on that. They can contact their agent, or if they want my or my team assistance, they can call me at 972-863-7772, 972-863-7772. They can visit my website, sinadainc.com, or they can simply Google my name, Hummera Jumani, and get all the contact information.
0: That is Hummera Jumani with Sinara Inc. 972-863-7772 is their phone number. Get with them. Get yourself sorted. Or yaad rakhiye ki it's not about a cheap coverage. It is about getting the right plans, the right offers, so you can get the best maximum benefits out of your claims. Is gaane ke baad aapke liye mere paas ek prashn, jiska jawab aap mujhe denge.

0: आज वैसे कमाल हो गया यार, कमाल हो गया आज, कमाल हो गया भैया। आज मैं जब ऑफिस आ रहा था 5 बजे के आसपास मेरा शो था, एंड यू नो कमाल क्या हो गया कि बादल दिखे पहले मुझे, बादल दिखे, मैंने कहा यार ये तो कमाल है, 8 बूंदे मेरी गाड़ी पे गिरी हैं, 8 ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल ऑन माई विंड स्क्रीन एंड आई गॉट हैप्पी। मैं अगर बारिश होगी, पर ये बादल ही बादल अभी तक नजर आ रहे हैं, कहीं डालस कोट में बारिश हो रही है, हो रही है तो मुझे कॉल करके जरूर बताइए यार कौन से इलाके में बारिश हो रही है, वहाँ जाके थोड़ी ठंडक तो लें। खैर आज का मौसम बेटर है, 84 degrees द करंट टेम्परेचर, आज का हाई था जी 97, सो वी आर सीइंग सम रिस्पाइट बिकॉज ऑफ दीज क्लाउड्स एंड टमोरो इट्स लुकिंग बेटर मैन, 77 फॉर अ लो, 95 फॉर अ हाई। Saturday we get back to that heat with 99 and 80, and Monday same temperatures, almost 90s and 70s, but the next weekend looks much better. It's a little wet because of the rain, but temperatures are going down. Good evening Fanesha, who's this?
1: Arvind bhai, Hasan baat kar raha
0: hu, kaise hain? Hasan bhai kaise hain?
1: Bas dua hai aapki, barish abhi ho rahi hai, Harian se Carrollton ke darmiyan start ho gayi hai.
0: क्या बात है, क्या बात है, बारिश का मजा लीजिए, बेगम को फोन कर दीजिए आ रहा हूँ, पकौड़े बना के रखें, और इस मौसम का
1: दोनों बेचारी,
0: अच्छा कॉलेज गई हुई, चलो फिर आप बेचारे बनो, घर जाके पकौड़े बनाओ, जब वो आएंगी उनको खिलाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल हसन भाई, गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
2: हाय, दिस इज नमिता।
0: ने क्या नाम बोला आपना?
2: नमिता।
0: नमिता कैसी है नमिता जी?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे घर वाले कहते थे पागल है तो थोड़ा लड़का ना, मैं वैसे मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से
2: कॉल? यहाँ आर्गाइल में बारिश हो रही है।
0: आर्गाइल में बारिश हो रही है, चलो अच्छी बात है। डू यू लाइक द रेन?
2: Yes, I do.
0: Very good.
2: इतने दिन के बाद तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा चलो एक बात बताओ, अब आप आई गए हो तो मुझे, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने रेडियो का वॉल्यूम कम करो पहले।
2: मैंने कम किया हुआ है।
0: अच्छा एको आ रही थी मुझे, मेरी आवाज सुन रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी भी सुन रही है मुझे मेरी आवाज, आपने मुझे ब्लूटूथ पे लगाया हुआ है तो वहाँ से भी हटाइए। अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई, अब ठीक। अच्छा चलो अब बताओ मुझे, देखो अगर कोई लेडी आपकी बात 5 मिनट में मान जाती है तो वो आपकी माँ है, आप उसको मनाते हो मम्मी प्लीज प्लीज, वो 5 मिनट मान जाती है, दैट इज मम्मी। अगर 15 मिनट में मानती है तो वो बहन है, क्योंकि दीदी को बोलना पड़ता है दीदी प्लीज खिला देना, आलू टिक्की खिला देना, फिर वो खिलाती है। अगर 30 मिनट में वो आपकी बात समझ जाए तो वो आपकी बेटी है, क्योंकि बेटी को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो आपकी बात बार बार बोलने पर भी ना सुने तो वो कौन है?
2: आपकी
0: कौन है?
2: आपकी दोस्त है।
0: दोस्त है, पक्की बात है?
2: हाँ पक्की बात है।
0: अच्छा मुझे तो लगा बहरी है क्योंकि सुन ही नहीं पा रही है, मैं अभी टाइम वेस्ट करने जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच। यू आर लिस्टिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो। हाँ हर बात में बीवी को लाने की जरूरत नहीं होती, बहरी है वो जिसको नहीं सुना, बार बार बोल रहे हो आप नहीं सुन रही है, इसका मतलब शी इज यू नो द हार्ड ऑफ हियरिंग मैन, यानी बीवी बीवी बीवी की तरफ जाते रहते हो आप। हर चीज इश्क के बाहर भी होती है कोई चीजें, वहां सोचा करो, ठीक है ना। चलो एक ब्रेक की तरफ मैं जाने लगा हूं, बट आई डू हैव अ मिनट बिफोर आई गो टू द ब्रेक, एंड एक और चीज आपको बता के जाता हूं। एक बीवी ने एक बड़ा कमाल का काम किया, बीवी ने लिया नया सिम कार्ड, ठीक है जी, अपना पुराना सिम कार्ड फेंक दिया, नया सिम कार्ड लिया और पति को सरप्राइज करने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया। वो किचन में गई तो उसने पति को फोन किया और फोन करके बोली हेलो डार्लिंग, पति आगे से बोलता है तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। भाई लीलावती सारे अस्पताल दुनिया भर के देख लिए, इलाज नहीं हो पा रहा है बंदे का। एक मॉडल है, मैं घर में ट्राई करके देख लेना। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। वी डू हैव अनदर 40 मिनट्स इन दिस जर्नी दैट वी कॉल द इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो ऑफ कोर्स। ऑल द अदर आरजेस दैट आर ऑन आवर स्टेशन डू अ फैंटास्टिक जॉब, किरण जी से लेके ऑल ऑफ द अदर्स, रिमिता मी टू, सो इफ यू लिसन टू देम थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ऑफ यू वी आर हेयर टू एंटरटेन यू ऑल। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ वापस, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज द वन एंड ओनली फन एशिया रेडियो 104.9 FM।
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab One Trusted Care, urgent care services ke saath, नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
6: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कल हिंदी हिंदी बोल.
7: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
8: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
9: फोन उठाइए नंबर दबाइए 347-449-4242.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Documents ya parcel bhejni hai?
14: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
16: वी नीड टू टॉक.
17: अब क्या हुआ?
16: Nothing. It's not you.
17: Oh no.
16: It's the distance.
17: Distance? We live 10 minutes apart.
16: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
18: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken Irving. Same obsession, less distance. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
19: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
20: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
19: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
20: Thousands ki life badli unki Divine guidance se. Now it's your turn.
19: Samasya ka pakka samadhan.
20: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
21: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa. का इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाल कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

0: शुक्र है कि आज भी जो रिश्ता मांगने जाने की प्रथा होती है ना, फाइनल करने की, उसमें लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती। अगर ये चली जाए अपना रिश्ता खुद देखने, तो ये बोलेंगी अंकल इसी डिजाइन में कोई और दिखाओ ना। भाई डिजाइन भी यही है, कलर भी यही है, यही चॉइस है, यही है राइट चॉइस बेबे। किसी ने मेरे से पूछा कि मार्विन इंग्लिश बड़ी हार्ड है यार, और मैंने कहा नहीं नहीं इंग्लिश हार्ड नहीं है बेटा, वो चक्कर क्या है कि थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है।
1: हुसन तेरा साकी साकी बिग बोरी बेब सुनती है ताकी ताकी या पाती के लाइक वसाबी हाँ जी तू सिने पे

0: प्यार किया तो निभाना, सर्दियां आएंगी तो एक दिन छोड़ के नहाना, मर्जी आपकी है। मेरे मन को भाया, मैंने आज सुबह केला काट के खाया और केले को मैंने डाला जी किसमें, आलमंड मिल्क में, उसमें मैंने डाले थोड़े से खजूर और फिर उसको दे दिया घुमाए घए घए घए घए घए, फिर निकाल के जो पिया भाई बड़ा मजा आया। एक तो अच्छी चीज़ है जी, प्रोटीन श्रोटीन होता है उसमें, आपको भी पी लेना चाहिए कभी कभी। लेडीज तो मतलब आपने देखा लेडीज ना कम प्रोटीन शेक्स वगैरह ड्रिंक्स वगैरह पीती हैं, क्योंकि मेरी भाभी एक दिन कह रही थी मेरे भाई को कि तू ना चुकंदर का जूस पिया कर सुबह सुबह। तो मेरे भैया कहते अच्छा अब इसमें भी तकलीफ है, खून भी तुझे फिल्टर्ड हाई क्वालिटी चाहिए यार।
1: तू लव करती है ना मेरे से, बस लव है तो सब है।
0: मैं सोच रहा हूँ आरओ लगवा लूँ, फिल्टर्ड आइटम पेश करूँ।

ये गाना मेरे दोस्त के लिए बना है, जिसको मैं बोलता था बात सुन, वो आते हुए ना ले आइयो एक, वो दो ले आता था, फिर मैं उसको बोलता कम ले आया कर, कम ले आया कर, कम ले आया, कम ले आया कर। अब इसको कौन समझाए कि वो दिलदार ही बहुत है ना, बंदा बड़ा अच्छा है। वो कहता है यार ज्यादा ही रखेंगे, बाद में कम पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे।

0: The reason to play this song today is because this is the day this song was actually born. जी हाँ, on today's date, which was the 10th of September, the year was 1991, when the rock band Nirvana released their single "Smells Like Teen Spirit," often dubbed the anthem of Generation X. Now, some facts I want to share with you about this song. Did you know कि जो गाना बना था, this was actually the title came from Kathleen Hanna, the lead singer of the punk band Bikini Kill, and this was a joke that she meant towards Cobain's girlfriend at that time, जिनका नाम था Toby Whale. Now, Toby Whale used to wear a deodorant which was called Teen Spirit deodorant. And Hannah was teasing that Cobain was literally marked by her scent. So, the concept of this song and the name came through Cobain's girlfriend at that time, Toby, who used to wear that deodorant. And that's why it was called Smells Like Teen Spirit. Now you know the rationale behind the name of this song. And it was today's date in the year 1991. I was about 7 years old when this track came out and became the anthem of Generation X. You're listening to your Evening Drive Time Show. The last segment is due and I'm coming back right on the other side after a short commercial break. Kithe na jao, don't go anywhere, na jao.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीज, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
13: ओचो.
14: It's Hoko.
15: अरे बस भी करो यार.
16: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
15: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है.
16: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
17: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
18: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा रीमेक वर्जन था जी, जो फुकरे रिटर्न्स में देखने को मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब की ओरिजिनल आवाज़, नेहा कक्कर का नई आवाज़ और रफ्तार साथ में जुड़ गए थे जी इसमें। यू आर गोना बी विद मी फॉर जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, बट आपको पहले बता दूं इफ़ यू आर इन ग्रैंड प्रेरी आर्लिंगटन एंड मैंसफील्ड एरिया, मैं रोज़ ये बात शेयर करता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू नो कि जो आप पहले जद्दोजहद में लगते थे कि यार ग्रोसरी स्टोर जाना एक प्रॉब्लम हो जाती थी, बिकॉज फ्राम आर्लिंगटन ग्रैंड प्रेरी मैंसफील्ड एरिया देसी ग्रोसरी स्टोर्स quite a bit of a drive, but now you have a solution in the name of Himalayan Bazaar. This is in Grand Prairie, right at the intersection of Highway 360 and Highway 20, and ye aapko Arlington mein serve kar rahe hain. They are serving Grand Prairie. They're also very close to Mansfield. Asian groceries, sari South Asian groceries, chahe aap India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, wherever you're from, and from Afghanistan, you get all the South Asian groceries there. Sara fresh produce, all of the frozen items, premium halal meats, and water buffalo for my Nepalese brothers and sisters. Hot snacks every day, jahan pe aapko chai, pakode, samosa, and coffee is made every day in the evening there. All very fresh for you. Sab kuch ek hi chhat ke niche hai. Agar aap 5 माइल के रेडियस में रहते हैं, एनी ग्रोसरी डिलीवरी ओवर $50, यू आर नॉट गोना पे एनी डिलीवरी फी. एड्रेस उनका है 5103 मैग्ना खाड़ा बुलेवार्ड इन ग्रैंड प्रेरी. एंड लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू चेक आउट देयर फ्री डिलीवरी ऑप्शन, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन हिमालयन बाजार इन योर ब्राउजर्स और इन योर मैप्स एंड सी हाउ फार यू आर. इफ यू आर विद इन अ 5 माइल रेडियस, अब तो जाने की जरूरत भी नहीं, ग्रोसरी सीधा घर आएगी. हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी फॉर यू. मेरा वक्त हो रहा है जी ऑलमोस्ट जाने का, पर कुछ गाने लगाना चाहता हूँ बिफोर आई लीव. एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू बाय द वे इसके साथ, कि आप भाइयों और बहनों ने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, क्या आप बता सकते हैं मुझे? आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में, लाइफ में अभी तक क्या खोया क्या पाया? जस्ट वांट टू शेयर अ जनरल, यू नो, सुनना चाहता हूँ आपके विचार कि क्या खोया क्या पाया, बताए जरा.

फरदीन खान ऑन द पीक ऑफ हिज करियर वाज इन दिस मूवी जिसका नाम था जी प्यार तूने क्या किया। फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी ही यू नो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी फॉर इट्स टाइम। उर्मिला मातोंडकर वाज प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल देन व्हाट वी आर यूज्ड टू सीइंग हर। बट इफ यू हैवंट सीन दैट मूवी, एक बार जरूर गो बैक टू योर हिस्ट्री और देखिए बॉलीवुड की हिस्ट्री में जाके ये फिल्म जिसका नाम था प्यार तूने क्या किया। इंडीड अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट फिल्म। यू नो हिंदुस्तान में देसी जो हम हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, हम लोग ना एक डायलॉग है हमारे पास, जब हमारी बुरी तरह कटाई कुटी हो जाए ना उसके बाद इज्जत बचाने के लिए ना ये डायलॉग बड़ा काम आता है। वो डायलॉग है, देख लूँगा मैं तुझे, छित्र छित्र खा चुके हैं हम, हैं जी कपड़े फटे हुए हैं, पर ये आवाज़ जो है ना यूथ के कानों से, मतलब जुबान से निकलती निकलती है, देख लूँगा मैं तुझे। मैं भी आप लोगों को देखूँगा मंडे को, क्योंकि कल है मेरी छुट्टी, मंडे टू फ्राइडे ये शो होता है जी। मैं भी देख लूँगा आप लोगों को मंडे शाम को 5 to 7 ऑन योर फेवरेट शो जिसका नाम है द बिंदास शो, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM। आज आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो लेडीज़ कहती हैं हर मर्द एक जैसा होता है, वो चाइना जाके आई होती हैं, और लेडीज़ एक जैसी होती हैं, जब आप कोरिया से वापस आओगे तब आपको पता लग जाएगा कि हर लड़की भी एक जैसी होती है। ऑल राइट, मेरे बाद इपी द हिपी एंटरटेनिंग यू ऑल द वे टिल 8, 9, 10 o'clock दिस इवनिंग। 3 घंटे का शो करती हैं। इफ यू हैवंट हर्ड अ शो, डू ट्यून इन, शी विल एंटरटेन यू बिंदास, झकास, मज़ेदार काम करती हैं, एंड शी इज़ न्यू टू द टीम बट शी इज़ डूइंग रियली वेल। सो इफ यू वांट लिसन टू सम क्वालिटी रेडियो प्रोग्रामिंग देन यू नो वेयर टू गो, 104.9 FM। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आई विल डू द सेम फॉर यू। मेक श्योर टू गेट योर टिकट्स फॉर कुमार शानू शो विच इज़ हैपनिंग टुमारो एट दिस ब्यूटिफुल वेन्यू इन प्लेनो, ब्रांड न्यू वेन्यू बनाया जी आपके लिए, विच इज़ कॉल्ड द प्लेनो रॉबिनसन फाइन आर्ट्स, दैट इज द प्लेस। टिकट्स आर एट eventbrite.com and sulekhatickets.com. With that, it is adios, shabakhair.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।